मैं कहीं कवि ना बन जाऊं। इस खूबसूरत गीत को अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। फिल्म का नाम था प्यार ही प्यार। और अब जो गीत आप सुनेंगे उसे गाया है किशोर कुमार ने, और फिल्म का नाम है कल आज और कल।

0: चलो कहीं छुप जाए।
1: अच्छा,
0: यहाँ हमें जमाना देखे। आओ चलो कहीं छुप जाए।

0: मैं मुकेश कुमार बल। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया है। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ कल मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। श्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
1: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। ये एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। श्री मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड जाएंगे। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड की यात्रा होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सुरक्षित सीमा, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और जागरूक समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार देश को पूरी तरह से घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण कर रही है। श्री शाह ने कल नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन को संबोधित किया। इस सम्मेलन में जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों सहित सीमावर्ती राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन सीटों पर उपचुनाव इस महीने की ओमान के विदेश मंत्रालय के महानिदेशक शेख अहमद अल मस्करी ने उनका स्वागत किया। डॉक्टर जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत, ओमान, न्यूयॉर्क और ब्रुसेल्स की 11 दिन की यात्रा पर हैं। फुटबॉल विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अमेरिका के बोस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल में पहले हाफ तक कोई गोल नहीं हुआ। दूसरे हाफ में किलियन एम्बापे ने 60वें मिनट में और उस्मान डेम्बले ने 66वें मिनट में गोल कर फ्रांस को जीत दिलाई। और ब्रिस्टल में चौथे T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 9 विकेट से हराया है। भारत के 159 रन के लक्ष्य को इंग्लैंड ने 37 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। 5 मैचों की श्रृंखला में इंग्लैंड ने 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे देश में सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर आज तेज वर्षा का अनुमान है। अगले 4 दिन तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश में तेज वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: FM Rainbow.
1: Welcome back, दोस्तों. Just we are talking about today kindness, gratitude and smile. दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि खुश रहने के लिए बहुत खुश चाहिए, लेकिन कई बार खुशी महंगे तोहफे से नहीं बल्कि किसी चेहरे की मुस्कान में छुपी होती है. कभी अजमा के देखिए कि कई बार तोहफे देने के बाद भी शायद अंदर से वो मुस्कान नहीं मिलती है. तो अच्छा, एक चीज़ बताइए आप लोग, एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि आखिरी बार अपने माता पिता से बिना किसी वजह के सिर्फ इतना कब कहा था, आप जो मेरे लिए करते हैं उसके लिए धन्यवाद. शायद याद करना पड़े, हाँ, क्योंकि हम अपनी लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं कि अपने अनमोल रिश्तों को ग्रेटिट्यूड करना ही भूल जाते हैं. बट आज 2 मिनट सुकून से बैठिए और अपने अनमोल रिश्तों को खूब, मतलब रिश्तों के साथ जो खूबसूरती के वो दिन बिताए आपने उनको याद कीजिए. या जो ऑफिस में काम कर रहे हैं आज, वो घर जाइए और बिना किसी खास वजह के अपने माता पिता, दादा दादी, भाई बहन या जीवन साथी को, सभी को एक बार दिल से धन्यवाद कहिए. यकीन मानिए, जवाब में जो मुस्कान मिलेगी वह किसी भी इनाम से कम नहीं होगी. सो ट्राई दिस एंड डू दिस. मिलते हैं एक खूबसूरत नगमे के साथ.

वेलकम बैक दोस्तों, यू आर लिसनिंग एफएम रेनबो 101.9 विथ योर आरजे सुरभि। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं काइंडनेस, ग्रेटिट्यूड एंड आपके सिंपल सोबर बिहेवियर की, जो दूसरों के लिए बहुत खुशी दे देता है। ग्रेटिट्यूड की यदि हम बात करें तो कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि पेरेंट्स हैं जो मेरे साथ भी नहीं हैं, आपके साथ भी नहीं होते हैं, ब्रदर हैं बाहर स्टडी कर रहे हैं और हमसे बहुत दूर होते हैं, लेकिन हमारे साथ ना होने के बाद भी हमारे पेरेंट्स को ग्रेटिट्यूड देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज जो भी हम इस दुनिया में बने हैं या आगे बनने वाले हैं और अभी जब भी बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनका साथ, अपने पेरेंट्स का साथ ना हमेशा अपने साथ रहता है। और उनका आशीर्वाद, आप उनके सामने हो या ना हो, कभी देखिए आप अलग होने के बाद भी आपकी माँ हर दिन कॉल लगा के पूछती रहेंगी, बेटा खाया नहीं खाया, बेटा कैसा रहा इंटरव्यू। तो छोटी छोटी सी बातें, लगती ऐसा है कि बस माँ पूछती है और इरिटेट करती है, कभी कभी ऐसा फीलिंग हो जाती है किसी किसी की, नॉट फॉर एवरीवन, लेकिन उनके उस पूछने में, उनकी उस केयर में ना पूरा आपसे जो अटैचमेंट होता है ना, वो आप नहीं समझेंगे जब तक कि आप खुद पेरेंट्स बन जाएंगे, ठीक है ना। तो वही मैं कहना चाह रही हूँ, यदि आपके पास आपके पेरेंट्स नहीं भी हैं, आप दूर हैं अपने पेरेंट्स से, अपने ब्रदर सिस्टर से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, तो एक ऑप्शन है आपके लिए, सुनना चाहेंगे तो सुबह शाम सबसे पहले उठिए, परमात्मा को नमस्कार कीजिए, फिर अपने पेरेंट्स को भी याद कीजिए, उनके चरणों को याद कीजिए कि कैसे छोटे में जब पेरेंट्स बोलते थे बेटा कहीं बाहर जा रहे हो ना, तो मम्मी बोलेगी पापा के पैर पढ़ो और पापा बोलेंगे नहीं मम्मी के भी पैर पढ़ो। तो वो पल याद कीजिए कि जो बचपन में सिखा दिया है, और जो बच्चे भी हैं यदि नहीं पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले उठिए, परमात्मा को याद करने के बाद पेरेंट्स को भी अपने उनके चरण छूइए। साथ ही साथ छोटे भाई बहन हैं या बड़े भाई बहन हैं, वो भी बहुत हेल्प करते हैं, वो ठीक है थोड़ी सी नोक झोंक तो चलती है, लेकिन उनके साथ उनका भी ग्रेटिट्यूड बहुत ज़रूरी होता है। जब आप परेशान होते हैं, जब आप कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं कोई तो है जो जिसके साथ मैं अपनी बात शेयर कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, तो वो आपके सिबलिंग्स ही हैं, चाहे वो छोटा भाई हो, छोटी बहन हो, छोटा बड़ा भाई या बड़ी बहन हो, तो इन सबका ग्रेटिट्यूड होना अपनी लाइफ में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि छोटी छोटी सी ग्रेटिट्यूड, छोटी सी स्माइल आपको बहुत आगे ले जाएगी। आइए सुनते हैं अगला गीत,

एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपके अपने शो एफएम रेनबो 101.9 के नमस्ते हेलो आदाब में, और आज हम बात कर रहे हैं काइंडनेस, स्माइल एंड ग्रेटिट्यूड। दोस्तों, दयालु होना हमेशा पैसे से नहीं जुड़ा होता है, कई बार किसी की बात को ध्यान से सुन लेना भी दयालुता है। किसी बुजुर्ग को

अलग पार करा देना भी काइंडनेस के कैटेगरी में आता है। किसी परेशान फ्रेंड से यह पूछ लेना कि सब ठीक है ना, क्या बात है, कुछ उदास लग रहे हो, ये भी काइंडनेस है। फ्रेंड तो ठीक है, यदि कोई रास्ते में मिल जाता है, कोई अपना सा लगता है और अपन मुस्कुरा देते हैं उसके लिए, तो हल्की सी मुस्कान से उसका दिन ही बन जाता है और उसकी छोटी सी परेशानी भी और बड़ी परेशानी भी कुछ देर के लिए तो कम कर ही देते हैं। कहा भी

0: दिन ही बन जाता है, और उसकी छोटी सी परेशानी भी और बड़ी परेशानी भी कुछ देर के लिए तो कम कर ही देते हैं। कहा भी क्या है कि अगर आपके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है तो मुस्कान दीजिए, यह भी एक खूबसूरत उपहार है। और मुस्कान की बात चली है तो एक छोटी सी बात और, क्या आपने कभी गौर किया है जब कोई अनजान व्यक्ति हमें देखकर मुस्कुरा देता है तो हम भी बिना सोचे ही उसे मुस्कुरा देते हैं। मुस्कान बिल्कुल बारिश की पहली बूंद की तरह होती है, एक से शुरू होती है और कई चेहरों तक पहुंच जाती है। अगर इस समय हमारे बच्चे इस चीज़ को सुन रहे होते हैं, मतलब कोई भी अभी बच्चा सुन रहा है, बड़ा सुन रहा है, तो उनसे भी एक छोटी सी बात, आज स्कूल जाइए या ऑफिस जाइए, अपने किसी भी ऐसे दोस्त से बात कीजिए जो अकेला बैठता है, जो लोनली फील करता है। हो सकता है आपकी दोस्ती उसका दिन बदल दे और ये दिन उसको एक पार्टी की तरह लगे। तो लेट्स ट्रैक टू द अनदर सॉन्ग।
1: Natural night. Do you feel alright? Wanna natural night?

वेलकम बैक दोस्तों, यू आर लिसनिंग एफएम रेनबो 101.9। तो आज हम बात कर रहे हैं स्माइल, काइंडनेस एंड एप्रिशिएशंस भी। दोस्तों, अभी मैं बात कर रही थी कि आज उस दोस्त के साथ या उस अपने क्लासमेट या ऑफिस में कली के साथ बैठिए जो बिल्कुल लोनली फील करता है, और उसको एक छोटी सी स्माइल कीजिए तो हो सकता है आज उसकी पार्टी हो गई हो। अभी इसी टॉपिक पे जब हम बात कर रहे हैं तो मैं आपसे एक छोटी सी कहानी शेयर करूंगी। उस कहानी को सुन के आपको लगेगा कि सचमुच एक स्माइल कैसे किसी का दिन बना सकती है। एक माली रोज़ एक पार्क में सफाई करता था और ज़्यादातर लोग वहाँ घूमकर चले जाते थे, लेकिन कोई कोई उसी से मतलब माली से कोई बात भी नहीं करता था। अपना घूमते थे, योगा करते थे और चले जाते थे, लेकिन एक बुज़ुर्ग रोज़ उसे देखकर कहते थे, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मतलब डेली एप्रिशिएशन देना अपनी रूटीन करते थे, और उस माली को हमेशा एप्रिशिएशन के साथ ही उससे बात करते थे कि बहुत अच्छा काम करते हो, पूरे पार्क में अच्छे से सफाई करते हो। एक दिन माली ने कहा, साहब लोग पार्क तो देखते हैं लेकिन मेरे काम को नहीं। आपका एक वाक्य मुझे केवल दिन और मतलब अगले दिन और मन लगाने की ताकत और मन लगा कर काम करने की ताकत दे देता है। दोस्तों, कभी कभी हमें पता नहीं होता कि हमारे एक शब्द की कीमत किसी दूसरे की ज़िंदगी में कितनी बड़ी अहमियत रखती है। मतलब हो सकता है वो शब्द जिसके लिए वो इंतज़ार काफ़ी टाइम से कर रहा है और आप बोल देते हैं, तो हो सकता है उसका दिन मतलब नेक्स्ट लेवल पर पहुँच जाता है। तो आज एक छोटा सा प्रॉमिस कीजिए मुझको, सभी लोग प्रॉमिस करिए और मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं कि आज हम तीन काम जरूर करेंगे। पहली बात, दिल खोल कर मुस्कुराएंगे। उसके लिए सोचना नहीं है, आपको मुस्कुराना है। छोटी सी कोई भी याद उठाइए, मुस्कुरा दीजिए। और दूसरी बात, जहाँ मौका मिलेगा काइंडनेस अपने साथ रखेंगे। काइंडनेस के लिए मैंने बताया ना आपको।

कहीं भी जहाँ भी लगे आप हेल्प कीजिए, कभी सिग्नल पे किसी बच्चे को बिस्किट खिला दीजिए, तो कभी कुछ भी आपको जहाँ भी लग रहा है कि कोई परेशान है आप उसकी हेल्प कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। और तीसरा आपसे कहूँगी कि जिन लोगों मतलब आप जिसके कारण एग्जिस्टेंस में हैं, जिन लोगों की वजह से हमारी ज़िंदगी आसान बनती है, उन्हें दिल से धन्यवाद कीजिए, दिल से उनका ग्रेटिट्यूड मानिए। अगर आप भी मानते हैं कि एक मुस्कान दुनिया को थोड़ा और खूबसूरत बना सकती है तो हमें ज़रूर बताइए। और आपकी ज़िंदगी किस इंसान की मुस्कान को सबसे ज़्यादा प्रेरित करती है और किस छोटी सी काइंडनेस ने आपका दिन यादगार बना दिया, हमको व्हाट्सएप कीजिए, हम उसे ज़रूर पढ़ेंगे। फिलहाल मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि आपकी मुस्कान शायद किसी और की उम्मीद बन गई है। मैं हूँ आपकी आरजे सुरभि जैन एंड यू आर लिसनिंग FM रेनबो 101.1 विद ब्यूटीफुल सॉन्ग।

0: FM Rainbow 101.9.
1: नमस्कार, हेलो, आदाब। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है और मैं हूँ आपकी आरजे सुरभि। आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 101.9। उम्मीद है आपका दिन मुस्कुराहटों के साथ आगे बढ़ रहा होगा। अभी पिछले घंटे हमने बात की स्माइल, काइंडनेस और ग्रेटिट्यूड की। अब उसी सफ़र को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। आज बात करेंगे तीन ऐसे मैजिक वर्ड जो सुनने में बहुत साधारण लगते हैं लेकिन रिश्तों को बहुत ही ज़्यादा साधारण बना देते हैं। वो मैजिक वर्ड्स हैं, आई थिंक आपको पता ही होगा, प्लीज़, सॉरी एंड थैंक यू। जब हम छोटे थे तो स्कूल में ही मतलब पढ़ा दिया जाता था कि वी हैव थ्री मैजिक वर्ड्स, प्लीज़, सॉरी एंड थैंक यू। लेकिन इसको यूज़ कहाँ करना है, कैसे करना है, बचपन में तो जल्दी कर लेते थे, कोई ईगो नहीं रहता था, एक सॉफ्टनेस के साथ कहीं भी इच्छा थी और सबसे कर लिया करते थे। लेकिन कभी सोचा है कि शब्दों में कितनी ताकत होती है? एक शब्द किसी का दिल जीत सकता है और एक शब्द किसी का दिल दुखा भी सकता है। इसलिए कहा जाता है कि बोलने से पहले मतलब सोचिए मत। यदि आप कुछ अच्छा बोल रहे हैं, किसी के बारे में भी अच्छा बोल रहे हैं, तो अच्छा तो बोलिए, बिना सोचे समझे बोल दीजिए, क्योंकि शब्द वापस नहीं आते। सुनते हैं एक मधुर गीत, स्टे विथ मी विथ योर आरजे सुरभि विथ एफएम रेनबो 101.9।

0: ಇರಾನಿ ಚಾಯ್,
1: ಬನ್ ಮಸ್ಕಾ,
0: ಹೈದರಾಬಾದಿ ಬಿರಿಯಾನಿ,
1: ಟಂಗ್ದಿ ಕಬಾಬ್,
0: ಕುರ್ಬಾನಿ ಕಾ ಮೀಠಾ,
1: ಶಹದೂದ್ ಮಲಾಯ್.
0: ಹೈದರಾಬಾದ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬಫೆ
1: ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಡಿಶ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಸ್ಟೋರಿ ವೇಟಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಟೋಲ್ಡ್.
0: ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಜಶ್ನೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಟ್ರೀಟ್.
1: ಫ್ರಮ್ 2 to 3 PM ಎವ್ರಿ ಡೇ ಆನ್ FM ರೇನ್ಬೋ 101.9.
0: ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಫುಡ್,
1: ಇಟ್ಸ್ ಕಲ್ಚರ್, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಫ್ಲೇವರ್ ರೋಲ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಒನ್.
0: ಜಶ್ನೆ ಹೈದರಾಬಾದ್.
2: Welcome back, dosto. You are listening FM Rainbow 101.9 with your RJ Surbhi. Aaj hum baat kar rahe hain abhi 3 magic words ki. Thank you, sorry and please. Ab main baat karti hoon sorry ki. Humse kai log, matlab hum log kai baar sochte hain ki sorry bolna means haar maan lena hota hai. Lekin sach to yeh hai ki sorry bolna haar nahi hota, balki रिश्तों को जीतने की कोशिश है. कई बार जब रिश्ते बिगड़ने की कगार पे हों, बिगड़ने ही वाले हों और लगता है कि एक सॉरी से हमारी बात बन सकती है, तो उसको बोलने में कभी भी हिचकिचाना नहीं चाहिए. मान लीजिए कि सुबह ऑफिस निकलने की जल्दी में आपने घर पर ही किसी से थोड़ा ऊंची आवाज़ में बात कर ली और पूरा दिन, मतलब बात करके आप चले भी गए और निकल भी गए, और ऑफिस में ना आप पूरा दिन मन आपको हैवी लगेगा, सामने वाला भी उदास रहेगा क्योंकि आप तो उसको गुस्से में चिल्ला कर आ गए ना. और साथ में जब आप ऑफिस में काम कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं लगेगा, अरे मैं तो उसको चिल्ला के आ गया. तो यदि लेकिन अगर शाम को जब लौटते हैं आप और उसके बाद सॉरी बोल देते हैं तो फिर भी बात बन जाएगी, लेकिन यदि निकलते ही समय सॉरी बोल देते तो शायद पूरा दिन आपका एकदम लाइट हो जाता और जिसको चिल्लाकर आए हैं उसका दिन भी एकदम औसम हो जाता. चलिए ठीक है, तब नहीं बोला तो एक बार आइए शाम को बोलिए कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए, तो शायद पूरा माहौल ही बदल जाता है ना. तो सॉरी बोलने में इतना क्यों सोचना, सॉरी से जब बात बन रही है, रिश्ते बन रहे हैं, तो बोलिए सॉरी, आगे बढ़िए विद ब्यूटीफुल सॉन्ग.
3: She's crazy like a fool.

0: द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: Where there's water, there's life. Come, let us adopt to rainwater harvesting techniques in our homes and offices. Let us build recharge pits and shafts, fix defunct borewells, remove silt from water bodies, plant as many trees as possible. This monsoon, let us join Catch the Rain campaign.

लो और ज़िंदगी को खूबसूरती से चलने दो। आज पूरे दिन में कम से कम मेरे लिए प्लीज़ 3 बार थैंक यू 3 बार कम से कम बोल रही हूँ। फिर तो आपको जितने बार बोलना है बोल सकते हैं। और जहाँ ज़रूरत हो दिल से सॉरी कीजिए और अपने रिश्तों को मजबूत कीजिए। और जुड़े रहिए हमारे साथ इस ब्यूटीफुल सॉन्ग के साथ।

0: Hey there, do you agree with me that some emotions cannot be explained? They can only be tasted. With a pinch of history, a spoonful of culture, and with a whole lot of flavor, every dish has a tale to tell. Of its roots, of its rich legacy, and about the goodness within it. From royal recipes to timeless streetside favorites, discover the stories behind your loved foods on Jashne Hyderabad on Rainbow FM at 2 p.m. every day. Jashne Hyderabad, where food is served on air.
1: Welcome back, dosto. You are listening FM Rainbow 101.9 with your RJ Surbhi. So, dosto, abhi hum baat kar rahe the थ्री मैजिक वर्ड्स की. उसके पहले हमने बात की काइंडनेस, स्माइल की और ग्रेटिट्यूड की. थ्री मैजिक वर्ड्स और काइंडनेस, ग्रेटिट्यूड के साथ मुझे आप ये बताइए कि कभी भी कि दोस्तों, मतलब ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत बात यही है कि काइंडनेस और ग्रेटिट्यूड बांटने से कभी भी कम नहीं होते, बल्कि बढ़ते जाते हैं. जो आज का हमारा छोटा सा रेनबो चैलेंज है वो आपको मैं बताती हूँ. आज पूरे दिन में आपने किस किस को बोला है ज़रा एक बार थैंक यू, सॉरी और प्लीज़ किस किस को बोला है मेरे साथ शेयर कीजिए, और उसको खुश भी किया है. और अभी मैं आपसे एक सवाल

पूछना चाहूंगी, क्या कभी किसी के थैंक यू से आपका दिन बन गया क्या, या आपने थैंक यू से किसी का दिन बना दिया? जी हाँ, या किसी की सॉरी ने आपके मन का गुस्सा दूर कर दिया? और कभी भी आपने किसी को सॉरी बोला तो उसका गुस्सा दूर हो गया? मतलब दोनों के रिश्ते तो मजबूत हो ही रहे हैं यदि आप सॉरी बोलें या सामने वाला सॉरी बोले। तो अपने एक्सपीरियंस हमें ज़रूर भेजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, और आपकी बातें इस कार्यक्रम में हम शामिल करते रहेंगे, और छोटी छोटी कहानियाँ भी, छोटे छोटे इंसिडेंट भी हम सुनाएंगे जो आपकी ज़िंदगी को खूबसूरती से आगे बढ़ाएंगे। चलिए, अब वक्त है एक खूबसूरत गीत का जो रिश्तों की गर्माहट और अपने आप के साथ अपनापन भी महसूस करा देगा। गीत का आनंद लीजिए और सुनते रहिए FM रेनबो 101.9 विथ योर आरजे सुरभि।

0: साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: वेलकम बैक दोस्तों, यू आर लिसनिंग एफएम रेनबो 101.9 विथ योर आरजे सुरभि। दोस्तों आज हमने बात की 3 मैजिक वर्ड्स की, ग्रेटिट्यूड की और स्माइल की। अब जरा बात करते हैं एक ऐसे खिलाड़ी की जिनका नाम लेते ही भारतीय क्रिकेट का एक सुनहरा दौर आंखों के सामने आ जाता है। आज जन्मदिन है भारतीय क्रिकेटर महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर जी का। उनके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन लेते हैं पहले थोड़ा सा ब्रेक, सुनते हैं समाचार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया की अपनी ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण राजकीय यात्रा आधिकारिक रूप से संपन्न कर ली है। यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे। यात्रा की शुरुआत भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी मंच से हुई, जहां कारोबार जगत के प्रमुखों ने वर्ष 2022 के आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से द्विपक्षीय व्यापार में 55% की वृद्धि का स्वागत किया। इस गति को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर वार्ता में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की। स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भी दोनों देशों ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। भारत को ऑस्ट्रेलिया से दीर्घकालिक यूरेनियम आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था को अंतिम रूप दिया गया। यात्रा का सबसे प्रभावशाली जनसंपर्क कार्यक्रम मेलबर्न के मावल स्टेडियम में आयोजित मेलबर्न मीट्स मोदी प्रवासी भारतीय सम्मेलन रहा, जिसमें लगभग 25,000 लोग उपस्थित थे। प्रधानमंत्री मोदी ने लगभग 10 लाख भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई लोगों को दोनों देशों के बीच जीवंत सेतु बताया।
1: भारत ऑस्ट्रेलिया मैच का रोमांच और दूसरा यह एहसास कि दोनों देशों में क्रिकेट केवल एक खेल नहीं लेकिन एक साझा जुनून है। लेकिन आज यहाँ कोई लास्ट ओवर फिनिश का प्रेशर नहीं है, आज यहाँ केवल खेल की खुशी है, हमारी मित्रता की गर्मजोशी है और फ्यूचर चैंपियंस की एनर्जी है।
0: प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने भी भारतीय समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि ये बहु सांस्कृतिक शक्ति ऑस्ट्रेलिया की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में विपक्ष के नेता एंगस टेलर से भी मुलाकात की। श्री टेलर ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑस्ट्रेलिया का सच्चा मित्र बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम निर्यात जैसी पहलों का समर्थन किया। प्रधानमंत्री तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड के लिए रवाना हो गए हैं। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्ष में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। सम्मेलन का उद्देश्य संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति का आकलन करके प्रवर्तन में सुधार के उपायों की पहचान कर देश के सीमा सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना था। इस अवसर पर गृहमंत्री ने कहा कि सरकार देश को पूरी तरह से घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण कर रही है।
2: विगत 12 साल में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ सीमा सुरक्षा

0: के लिए काम हुआ है। सबसे पहले बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर राजस्व खर्च होना, इसकी प्रायोरिटी चिन्हित करना और चिन्हित प्रायोरिटी पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना। हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो 2013 का बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर और आज के बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर में 400% का परिवर्तन है। बॉर्डर सुरक्षा की पहली जो रिक्वायरमेंट थी, बॉर्डर के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, इसको सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से किया है।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार E85 ईंधन शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि यह ईंधन मानक E20 पेट्रोल की तुलना में करीब 20 रूपये प्रति लीटर सस्ता होगा। हालांकि E85 केवल उन वाहनों के लिए उपलब्ध होगा जिन्हें विशेष रूप से इस ईंधन के उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज बढ़त का रुख है। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 803 अंक बढ़कर 77,545 जबकि निफ्टी 243 अंक की बढ़त के साथ 24,205 पर पहुंच गया। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज लंदन के लॉर्ड्स मैदान में मेजबान इंग्लैंड के साथ ऐतिहासिक एक दिवसीय टेस्ट मैच खेलेगी। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे से शुरू होगा। ये पहली बार है जब लॉर्ड्स मैदान पर महिला टेस्ट मैच खेला जाएगा। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: the final farewell. His eldest son, Sayyid Mustafa Khamenei, performed the ritual prayers. Ayatollah Ali Khamenei was killed in U.S.-Israeli strikes on the 28th of February this year, triggering a widespread conflict across the West Asia region. The India Meteorological Department has issued a red alert for heavy to very heavy rainfall with isolated extremely heavy rainfall in Uttarakhand today, while in some parts of Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Sub-Himalayan, West Bengal, Sikkim and Uttar Pradesh, heavy to very heavy rainfall is expected today. Meanwhile, several areas of the national capital are witnessing very light to light rainfall since this morning. The Met Department has issued a yellow alert for light to moderate rainfall over the national capital today. In the FIFA World Cup, France stormed into the semi-finals after defeating Morocco 2-0 in the first quarter-final in Boston, USA. The teams were goalless at halftime, but France took control in the second half with Kylian Mbappe scoring in the 60th minute and Ousmane Dembele doubling the lead in the 66th minute. In the second quarter-final tonight, Spain will face Belgium. In men's cricket, hosts England defeated India by 9 wickets in the 4th T20 International at the County Ground in Bristol last night. India's women's cricket team will create history today when they play the first match at the iconic Lord's Cricket Ground in London against England. It will be the first ever women's test to be held at Lord's. Led by Harmanpreet Kaur, India will look to make the occasion memorable in this historic encounter. And with that, we end this news bulletin.
1: వేగంగా పెంచుకోవడానికి మీరు సిద్ధంగా ఉన్నారా? ఎల్ఐసి ఇండెక్స్ ప్లస్ నెలకి కేవలం 2,500 రూపాయల ప్రీమియం తో ఫ్లెక్సీ స్మార్ట్ గ్రోత్ ఫండ్, ఇది నిఫ్టీ 50 లోని స్టాక్స్ లో పెట్టుబడి పెడుతుంది, లేదా ఫ్లెక్సీ గ్రోత్ ఫండ్, ఇది నిఫ్టీ 100 పై దృష్టి సారించి అభివృద్ధిని లక్ష్యంగా ఉంచుతుంది. ఎల్ఐసి హర్ పల్ ఆప్కే సాథ్.
2: వెల్కమ్ బ్యాక్ దోస్తో, యు ఆర్ లిస్నింగ్ ఎఫ్ఎం రెయిన్బో 101.9 విత్ యువర్ ఆర్జే సుర్బి. गुड मॉर्निंग से गुड आफ्टरनून हो गया है और हमारी बातें इस तरीके से चलती रहेंगी. अभी हम बात कर रहे थे 3 मैजिक वर्ड्स की, स्माइल की और ग्रेटिट्यूड की. अब हम बात कर रहे हैं हमारे जाने माने क्रिकेटर सुनील गावस्कर जी की, क्योंकि आज उनका है जन्मदिन. दोस्तों, क्रिकेट सिर्फ चौके छक्कों का खेल नहीं, यह धैर्य, डिसिप्लिन और सही समय पर सही फैसला लेने की कला है. ये सोचते हैं कि नहीं, उठाएंगे और एक बल्ला लगा दिया और बस हो गया मैच. जी नहीं, कब कैसे क्या करना है ये पूरी स्ट्रेटजी होती है, तभी आप क्रिकेट की दुनिया में कुछ कर सकते हैं. और अगर इन गुणों की मिसाल देनी हो तो सुनील गावस्कर जी का नाम सबसे पहले याद आता है. आज के दौर में हम हेलमेट, आधुनिक बैट और कई तरह की सुरक्षा उपकरण देखते हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब दुनिया के सबसे तेज बॉलर्स का सामना करना आसान नहीं होता था. उस दौर में सुनील गावस्कर जी ने अपने आत्मविश्वास और शानदार तकनीक से दुनिया को दिखाया कि हिम्मत का कोई विकल्प नहीं होता. सो, कहते हैं कि सफलता सिर्फ प्रतिभा से नहीं मिलती, बल्कि रोज की मेहनत से मिलती है. कंसिस्टेंसी होना चाहिए, ये नहीं कि आज कर लिया काम अब ठीक है 3 दिन बाद करेंगे, नॉट लाइक दैट. सो डेली किसी चीज़ की जब आप प्रैक्टिस करते हैं, कोई भी टैलेंट हो, कोई भी काम हो, डेफिनेटली आप में परफेक्शन तो आएगा ही. तो सुनील गावस्कर जी घंटों नेट्स पर अभ्यास करते थे, हर गेंद को मतलब बड़ी गंभीरता से खेलना, हर पारी की नई शुरुआत मानना, यह उनकी सबसे बड़ी ताकत थी. उनकी बातों का, उनके बारे में बातें तो चलती ही रहेंगी. पहले सुनते हैं, आइए, एक ब्यूटीफुल सॉन्ग.

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र।
3: वेलकम बैक दोस्तों, यू आर लिसनिंग एफएम रेनबो 101.9 विथ योर आरजे सुरभि। आज हम बात कर रहे हैं महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर की। सुनील गावस्कर जी का जीवन हमें सिर्फ स्ट्रगल करने के साथ साथ ये तो सिखाता ही है कि कंसिस्टेंसी और एक डिसिप्लिन लाइफ में कितना ज़रूरी है। उनका काम सिर्फ ये नहीं कि मन में सिर्फ एक ही फोकस हुआ करता था कि मुझे रिकॉर्ड बनाना, ऐसा कुछ नहीं था। उनके पीछे होती थी वर्षों की मेहनत, डिसिप्लिन और काम के प्रति अपनी

ईमानदारी। आज के इस खास दिन पर अगर हम उन्हें कोई उपहार देना चाहें तो शायद यही होगा कि हम भी अपने जीवन में डिसिप्लिन को जगह दें। चाहे पढ़ाई हो, चाहे नौकरी हो, घर की जिम्मेदारियां हो या कोई सपना, रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहना ही असली जीत है। वैसे तो दोस्तों, जन्मदिन सिर्फ मतलब केक नहीं काटना होता है। जन्मदिन का मतलब किसी को विशेष देना, मतलब उस इंसान के सफर को याद करने का भी दिन है जिसने अपने काम से लाखों लोगों को प्रेरित किया और लाखों लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई। जी हाँ, सुनील गावस्कर निश्चित रूप से ही ऐसे ही व्यक्तित्व हैं। तो आइए FM रेनबो परिवार की ओर से उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं, और उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ साथ उनके सफल जीवन की भी कामना करते हैं। हम कामना करते हैं कि उनका अनुभव, उनका मार्गदर्शन आने वाली पीढ़ियों को इसी तरह प्रेरित करता रहिए। और अब बारी है, अगर आज आपको सुनील गावस्कर जी के जन्मदिन मतलब केक नहीं काटना होता है, जन्मदिन का मतलब किसी को विशेष देना, मतलब उस इंसान के सफर को याद करने का भी दिन है जिसने अपने काम से लाखों लोगों को प्रेरित किया और लाखों लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई। जी हाँ, सुनील गावस्कर निश्चित रूप से ही ऐसे ही व्यक्तित्व हैं। तो आइए FM रेनबो परिवार की ओर से उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं, और उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ साथ उनके सफल जीवन की भी कामना करते हैं। हम कामना करते हैं कि उनका अनुभव, उनका मार्गदर्शन आने वाली पीढ़ियों को इसी तरह प्रेरित करता रहिए। और अब बारी है, अगर आज आपको सुनील गावस्कर जी के जन्मदिन का एक संदेश भेजने का मौका मिले तो आप क्या लिखेंगे? सिर्फ एक पंक्ति में अपने दिल से लिखिए और संदेश भेजते रहिए। आइए सुनते हैं एक खूबसूरत गीत और उसका आनंद लेते हैं।

0: बन के
1: एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके सो एफएम रेनबो 101.9 पे और मैं हूँ आपकी आरजे सुरभि। अभी हम बात कर रहे थे सुनील गावस्कर जी की और अब बढ़ते हैं अपने अगले पड़ाव में। कुछ देर पहले जो मैंने बात की सुनील गावस्कर जी के प्रेरणा की, अनुशासन की, उन लोगों की जिन्होंने अपने कर्मों से लाखों लोगों को प्रेरित किया, लेकिन जिंदगी सिर्फ काम, पढ़ाई और जिम्मेदारियों का नाम नहीं है। हाँ जी दोस्तों, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट, थोड़ी सी अपनी लाइफ ऐसे टाइम में निकालना जहाँ आपको बहुत खुशी मिलती है, तो ज़िंदगी में एक ऐसा कोना भी होना चाहिए जहाँ हम खुद से मिल सकें और जहाँ कोई लक्ष्य ना हो, कोई कॉम्पिटिशन भी ना हो, सिर्फ मन का सुकून हो। हाँ जी, और सुकून का नाम हो तो ऐसा काम जब अच्छा लगता है, जब जहाँ आपको अंदर से खुशी मिलती है, जैसे हम उसको हॉबी भी बोल सकते हैं, कि ऐसा जब खाली टाइम मिले तो आप अपने मन से कुछ भी करना चाहें, चाहे वो आपके ऊपर है। लेकिन कभी आपने गौर किया है कि बचपन में हमें किसी वजह की ज़रूरत नहीं होती थी खुश होने के लिए? कभी मतलब अपना जो मन होता था वो कर लिया करते थे, है ना? तो कभी रंग भरना जैसे बचपन का काम था, कलरिंग में ही लगे हुए हैं और उसमें ही मज़ा आ रहा है, तो वो ये नहीं रहता था टेंशन कि कलरिंग कैसे हो रही है, बस मैं खुश हूँ यही सोचना रहता था उस समय। तो कभी रंग भरना, तो कभी पतंग उड़ाना, और जैसी बारिश आए और दौड़ लगा के भाग जाना मम्मी के रोकने पर भी, कभी कोई हेजिटेशन नहीं रहता था। क्यों? क्योंकि बहुत निश्चिंत होते थे ना उस समय। और कभी पुरानी डायरी में कुछ लिखना, उसको डेकोरेट करना, मतलब ये छोटी छोटी सी जो बातें हैं ना, चेहरे पे मुस्कान ले आती हैं। देखिए मैं आपको बता रही हूँ और मुझे भी मेरे चेहरे पे मुस्कान आ गई कि कहाँ गया वो बचपन जहाँ बिना सोचे समझे कुछ भी कर लिया करते थे, वो हमारा हॉबी टाइम हुआ करता था। तो आज हम बात कर रहे हैं हॉबीज़ की, कि मतलब आपको जो अच्छा लगे उसके लिए कोई उम्र नहीं होती। लेकिन हाँ, एक बात तो है कि जैसे जैसे जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, वैसे वैसे हमने अपने शौक कहीं पीछे छोड़ दिए हैं। तो अभी ये हॉबीज़ की बातें चलती रहेंगी, उसके पहले सुनते हैं एक खूबसूरत सॉन्ग।

0: द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: Where there's water, there's life. Come, let us adopt rain water harvesting techniques in our homes and offices. Let us build recharge pits and shafts, fix defunct bore wells, remove silt from water bodies, plant as many trees as possible. This monsoon, let us join Catch the Rain campaign.
2: वेलकम बैक दोस्तों, यू आर लिसनिंग एफएम रेनबो 101.9 विथ योर आरजे सुरभि। अभी हम बात कर रहे थे हॉबीज़ की, बताया ना कि हॉबीज़ से कितना रिलैक्स फील होता है, क्योंकि आज जब हम इतने बिजी लाइफ में हैं तो पता नहीं कहाँ हॉबी के लिए टाइम निकाल पाते हैं कि नहीं। क्योंकि सुबह अगर आप ऑफिस जाने की जल्दी में थे और शायद ट्रैफिक ने आपका पेशेंस भी परखा होगा, किसी की मीटिंग होगी तो किसी की परीक्षा और किसी की दुकान तो किसी की ड्यूटी, हर किसी की ज़िंदगी में भाग दौड़ है और इस भाग दौड़ में हमने अपने लिए भी 10 मिनट निकालना बड़ा ही मुश्किल कर दिया है। तो बताइए आप लोग कि निकालते हैं कि नहीं, 10 मिनट की सिर्फ लगे हैं वही मीटिंग में, एग्ज़ाम में और पूरा स्ट्रेसफुल लाइफ जीने में। नहीं नहीं दोस्तों, थोड़ा सा अपनी गाड़ी को बैक कीजिए ये स्ट्रगल की, और थोड़ी सी भाग दौड़ की गाड़ी का यू टर्न लीजिए और थोड़ा सा टाइम अपनी इंटरेस्टिंग चीज़ों के लिए भी निकालिए। क्योंकि एक बार एक शिक्षक ने अपने विद्यार्थी से

पूछा था कि दिन का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है। तो किसी ने कहा सुबह, किसी ने कहा शाम। तो तभी एक छात्र बोला कि नहीं, जब मैं गिटार बजाता हूँ ना तो वो मेरे दिन का सबसे अच्छा समय होता है। तो मतलब टीचर मुस्कुराए और बोले, ये तुम्हारी हॉबी है और यही तुम, मतलब उसने बोला जी हाँ, और यही तुम्हारे हर दिन की भी ऊर्जा, मतलब जो हॉबी होती है ना वही, मतलब डेली की जो तुमको एनर्जी देती है वो आपकी हॉबी ही देती। क्यों? क्योंकि उसको आप बहुत मन से कर रहे होते हैं, किसी का कोई प्रेशर नहीं होता है, कोई कंपटीशन का नहीं रहता है कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं, बॉस मुझे डांटेगा तो नहीं, या फिर मैं कहीं लेट तो नहीं पहुंच रहा हूँ। वो हॉबी है, जितना भी टाइम निकालें उतना टेंशन फ्री होके निकालते हैं, ठीक है ना? तो लगे रहिए अपने अच्छी सी कोई हॉबी में जिसमें भी आपको सुकून मिलता है ना। उसके पहले आइए सुनते हैं एक सॉन्ग।

0: జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ ఎస్ఐఆర్ 2026 జూన్ 25 నుంచి జూలై 24 వరకు గణన దశ. ఈ దశలో బూత్ లెవెల్ ఆఫీసర్స్ ఇంటింటికి వచ్చి ఓటర్ ఎన్యూమరేషన్ ఫామ్ ని ఇస్తారు. ఓటర్ల ఫామ్ ను పూర్తి చేసి తిరిగి సంబంధిత బిఎల్ఓకు అందజేయాలి. ఆన్లైన్ లో ఓటర్ ఎన్యూమరేషన్ ఫామ్ సబ్మిట్ చేయాలనుకునే వారు voters.eci.gov.in వెబ్సైట్ లో నమోదు చేసుకోవచ్చు. గుర్తుంచుకోండి, ఓటర్ ఎన్యూమరేషన్ ఫామ్ పూర్తి చేసి తిరిగిచ్చిన వారి పేర్లు మాత్రమే ముసాయిదా జాబితాలో చేర్చబడతాయి. జారీ చేయవారు ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి, తెలంగాణ.
1: वेलकम बैक दोस्तों, यू आर लिसनिंग एफएम रेनबो 101.9 विथ योर आरजे सुरभि. दोस्तों अभी हम बात कर रहे थे हॉबी की, मतलब एक ऐसा स्किल जिसको करने से आपको बहुत मजा आता है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो आपको म्यूजिक सुनना हो, चाहे आप कहीं भी इंगेज हो सकते हैं, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा सुकून आपको मिलता है. जी हाँ दोस्तों, हॉबी का मतलब सिर्फ समय बिताना नहीं है, हॉबी का मतलब है अपने मन को वह काम देना जिससे उसे खुशी मिले. जी, और किसी को जैसे कि किताबें पढ़ना पसंद है तो किसी को संगीत सुनना, और कोई पौधों से बातें करता है तो कोई कमरे में खूबसूरत लम्हे कैद करता है अपने कैमरे से. तो मैं चाहूँगी आप सभी जरा एक पल के लिए सोचिए और आखिरी बार अपने आप, मतलब अपने पसंद का काम कब किया था उसको मुझे बताइए. सिर्फ इसलिए नहीं कि वो आपको अच्छा लगता है, इसलिए भी क्योंकि आपको उससे सुकून भी मिलता है और वह आपके लिए कभी कभी ज़रूरी भी हो जाता है. कई लोग कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, मुझे तो गिटार बजाना बहुत पसंद है, मुझे ये करना बहुत पसंद है, लेकिन मुझे समय नहीं है. लेकिन सच तो यह है कि हॉबी समय नहीं लेती, वह हमें समय की भाग दौड़ से थोड़ी सी देर के लिए बाहर निकालती है. सच है ना दोस्तों, कभी अपनी फेवरेट चीज़ के लिए भी टाइम निकालिए और उसके बाद जो आप रिलैक्स फील करेंगे ना, मतलब आपको खुद ही वो फील होगा कि हाँ सच में ये काफ़ी टाइम से मैंने नहीं किया था और आज मुझे करने के बाद बड़ा सुकून मिल रहा है. तो अपनी हॉबी के बारे में सोचिए, थोड़ा सा टाइम निकालिए. जब तक चलते हैं एक खूबसूरत सॉन्ग के साथ.

0: इसी हॉबी से रिलेटेड मुझे एक बात याद आती है कि एक कहानी जैसी ही है छोटी सी आपके लिए, कि एक जो बुजुर्ग दंपति थे, जब दोनों हस्बैंड वाइफ साथ में रहते थे रिटायरमेंट के बाद, दोनों अक्सर अकेलापन महसूस करते थे, बच्चे बाहर थे। आजकल का एक्चुअली ना कल्चर हो गया है, सभी पेरेंट्स भी चाहते हैं कि मेरा बच्चा बहुत पढ़ाई करे और बहुत आगे बढ़े, लेकिन ये भूल जाते हैं कि वो बाहर तो चला जाएगा पढ़ाई के लिए, लेकिन वो अकेले रह जाएंगे। तो मैं बात कर रही थी कि रिटायरमेंट के बाद दोनों अक्सर अकेला महसूस कर रहे थे। एक दिन उन्होंने अपनी छत पर कुछ गमले रखे और गार्डनिंग शुरू कर दी। धीरे धीरे ना उनके जो प्लांट्स थे बढ़ने लगे, फ्लावर्स आए और उनके चेहरे पे भी मुस्कान लौट के आ गई। ऐसा लगा कि शायद उनके बच्चे उनके पास फिर से लौट कर आ गए, क्योंकि वो फूल जो खिले थे वो इनके बच्चों के ही तरह थे। क्योंकि जब आप किसी चीज़ को बड़ी केयर से आगे बढ़ाते हैं, उसको संभाल करते हैं, तो वो चाहे फूल हो चाहे आपका बच्चा, एक लगाव तो हो ही जाता है ना। तो उनके चेहरों की मुस्कान जो लौट आई उन फूलों को देख के, सबसे बड़ा सुकून था उनके लिए। उन्होंने कहा कि हमें लगा था कि हम पौधों की देखभाल कर रहे हैं, लेकिन असल में पौधे हमारी देखभाल कर रहे थे। ऐसा क्यों कहा? एक्चुअली क्या है ना, बात यह है कि कभी कभी प्रकृति हमें बिना कुछ कहे बहुत कुछ सिखा देती है। कि वैसे तो वो पौधे नहीं लगाते और अकेले बैठे रहते तो वही स्ट्रेस वाली लाइफ, कुछ बोरिंग, लेकिन जैसे ही उन्होंने प्लांट लगाए ना तो बिजी भी हो गए, कुछ हर चीज़ के लिए वेट करते थे कि कब लीव आएगी, कब फ्लावर आएंगे। तो कुछ एक नया नया एक मूवमेंट उनको फील हो रहा था, उसकी केयर करना भी, दे आर एंगेजिंग योर सेल्फ। तो ये है कि आप कहीं ना कहीं जहाँ आपको सुकून मिलता है उस काम में लगे रहिए। तब तक सुनते हैं इस काम धाम और हॉबी की बात के साथ एक गाना, लेकिन पहले उसके पहले सुनते हैं एक छोटा सा प्रोमो।
1: Hey there, do you agree with me that some emotions cannot be explained? They can only be tasted. With a pinch of history, a spoonful of culture, and with a whole lot of flavor, every dish has a tale to tell. Of its roots, of its rich legacy, and about the goodness within it. From royal recipes to timeless streetside favorites, discover the stories behind your loved foods on Jashne Hyderabad on Rainbow FM at 2 p.m. every day.
2: Irani chai,
1: bun maska,
2: Hyderabadi biryani,
1: tangdi kebab,
2: kurbani ka meeta,
1: shehdood malai.
2: Hyderabad is a grand buffet,
1: and every dish has a story waiting to be told.
2: Exactly. That's why Jashne Hyderabad is your afternoon treat.
1: From 2 to 3 p.m. every day on FM Rainbow 101.9.
2: It's not just food.
1: It's culture, history and flavor rolled into one.
2: Jashne Hyderabad. Irani chai.
1: Bun maska.
2: Hyderabadi biryani.
1: Tangdi kebab.
2: Kurbani ka meeta,
1: shehdood malai.
2: Hyderabad is a grand buffet,
1: and every dish.
3: Eid mama, tinnan goda mante, e biryani o mandi o ankunte, ya ji place ko vattukochnu.
4: Vintage bar janni itlane unte macha. Eppudu tinnade endinto? Ikkada tomato ka kaat mast untadi.
3: Adind mama, nen eppudu vinledu.
4: Idigo order vachesindi, mundu tini cheppu etlundo.
3: Kirakundi mama, ee place lu, ee dish lu etta telusa mama niki anni?
4: జష్నే హైదరాబాద్, జష్నే హైదరాబాద్.

0: मेरे से तो बात कर लिए आप।
1: सर बोलिए, कैसे हैं आप?
0: मैं तो ठीक हूँ मैडम, आप कैसे हैं?
1: मैं बढ़िया हूँ सर, आप बताइए क्या है आपकी हॉबी और पैशन है आपकी?
0: या तो क्या है, हम अब तो मेरा एज 75 है, तो ये की लोकेलिटी में रहते हुए 65 ईयर बीत गए हैं। तो या तो मैं जो है सो दोस्ती करने में बहुत माहिर हूँ। दोस्ती कर लेना मेरा ये है, क्या बोलते बॉडी का एडिक्ट है मेरे को, बहुत लोगों से मिलना जुलना, उन लोग क्या करते उनके क्या हाल क्या है, कैसा रहते किधर रहते क्या है, वो सब उनका हिस्ट्री पूरा मालूम कर लेता हूँ। क्योंकि मैं हमारे घर के पास ही एक पार्क है, तो एवरीथिंग आई विल डू इन द पार्क ओनली। तो जैसा पर्सन जून यस तो उन लोगों से, क्योंकि जुलाई जून 21 को तो योगा डे था, तो उसको करना हमारा लाजमी है। इतने साल से 2015 से मैं कर रहा हूँ। एक हमारे पास दोस्त है, तो योगा ट्रेनर है, तो उनको हमेशा उनको ही बुलाते हैं, उनको बुला के पूरा करके एक घंटा 7 AM तक हमारा एक घंटे का प्रोग्राम रहता है। वो घंटे के प्रोग्राम में उन्हें पूरे बता देते हैं, और शायद उनको कुछ बाद में बोलते हैं कि उनको अगर जरूरत है तो मंथली वन साहब तो भी आने को लिए तैयार है। इफ एट ऑल पीपल आर रेडी टू ज्वाइन विद देम, तो ऐसा हमारा काम चलते रहता है। तो और क्या है, अभी मैं January 20th को आई स्टार्टेड दी लाफिंग क्लास। तो लाफिंग एंड क्लैपिंग, या तो उसको भी क्या है छोटे से यस यस तो उससे क्या होता है, लोग भी मिलते हैं, जो भी नए आए आते हैं वैसे ज्वाइन होते हैं। तो ऐसा हमारा करते हम क्या करते हैं, पूरे प्रोग्राम वगैरह पूरे करते हैं। तो मेरे को क्या है, दोस्ती करना बहुत ही आदत है मेरे को, तो जो भी नए पार्क में आते हैं डेफिनेटली आई विल मीट विद देम, आई विल टेल आवर एक्टिविटीज एंड देयर एक्टिविटीज आल्सो आई टेल। तो हमारा क्या है, डेली मॉर्निंग 4 o'clock आई विल गेट अप इन द मॉर्निंग। तो यस

0: Yes. Yes. हमारा मेन नेम क्या है? मानव सेवा ये माधव सेवा. तो किसको भी क्या जरूरत पड़ा तो भी हमारे पास आते हैं, पूछते हैं. आई विल डू दी यू दी सजेशन. अब उनको जैसा भी दिल बोला वैसा उनको हेल्प करने की कोशिश करते हैं.
1: अच्छा,
0: थैंक यू माँ, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच. आपका नाम नहीं बोले क्या माँ? अच्छा ओके, थैंक यू, थैंक यू माँ.
2: अगले कॉलर आइए उनसे बात करते हैं. हेलो रेनबो, हेलो हेलो रेनबो,
3: हेलो
2: रेनबो,
3: हेलो आवाज नहीं आ रहा
2: है. हेलो रेनबो,
3: हेलो
2: हेलो,
3: गुड आफ्टरनून.
2: लगता है कुछ नेटवर्क इशू है, तब तक हम सुनते हैं एक मधुर संगीत.

0: हेलो रेनबो, हमारे साथ जुड़ रहे
1: हेलो
0: हैं हमारे अगले कॉलर सोनू जी। हेलो सोनी, सोनू जी।
1: हेलो
0: हेलो
1: हेलो हेलो
0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो
1: हाँ
0: हेलो
1: हेलो, मैं बात कर रहा हूँ।
0: हेलो
1: हेलो प्लीज सर, अभी बात करो प्लीज।
0: सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है।
1: हाँ अरे मैं बहुत दूर हूँ, आ जाए फर्स्ट टाइम से बहुत दूर आ जाए, पूरा इधर कुछ भी आवाज नहीं है। बोलिए, अभी आ रहे
0: जी
1: हैं,
0: जी
1: अभी आ रहे हैं।
0: हाँ सर, बताइए सर, आपका क्या प्रश्न तो आपको पता ही है ना।
1: हाँ, टॉपिक के लिए मैं कंफर्म हूँ, आपका टॉपिक बहुत अच्छा है आज, और
0: हाँ
1: आज भी जो उपस्थापना करे आज बहुत खुशल खुशल लगा, मेरे को बहुत खुशी दिया, बहुत आनंद दिया,
0: थैंक यू
1: आनंददायक
0: सर।
1: टॉपिक है।
0: जी जी
1: और आपका नाम जैसा और ऐसा स्टूडेंट भी बिछड़ गया,
0: जी
1: मेरा
0: जी
1: हबीब है।
0: जी
1: मैं इस तरह को जाने से पहले भगवान को प्रणाम करता हूँ, और सारा सृष्टि के प्रकृति के और भविष्य में प्रणाम करके सीधा मेरा प्रणाम करके सो जाता हूँ।
0: जी जी जी
1: और ऐसा बोले तो मेरा संगीत बहुत हबीब है, रेडियो
0: जी
1: सुनना, रात
0: जी
1: 11-12 बजे रेडियो सुनता हूँ, नींद नहीं आ रहे। आज
0: जी
1: सुबह
0: जी
1: 6 बजे पहले से उठता हूँ, उठते बिस्तरा छोड़ते भगवान को पहले प्रणाम करके, पितामह का प्रणाम करके, सारा सृष्टि को प्रकृति को धरती माँ का प्रणाम करे, सूर्य नमस्कार करता हूँ। ज्यादा स्थान बराबर नहीं है, सूर्य नमस्कार पूरा नहीं कर पा रहा,
0: जी
1: थोड़ा
0: जी
1: जोर
0: जी
1: जान कर प्रणाम करके योगा करता, रेडियो चालू रहता, ये
0: जी
1: मेरा हबीब है।
0: जी जी
1: और
0: मतलब
1: सफर
0: आप
1: मिलता बहुत
0: ग्रेटिट्यूड तो
1: बेहतर।
0: देते ही देते हैं भगवान को, जैसा कि
1: थैंक यू मैडम,
0: मैंने आज
1: पब्लिश
0: बोला।
1: करो तुम्हारे को। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक
0: थैंक यू सर, थैंक यू। आपके साथ
1: यू,
0: तो बात
1: बहुत
0: करके बहुत अच्छा
1: खुशी
0: लगा।
1: लगा,
0: थैंक यू सर, थैंक यू,
1: शुक्रिया मेरे।
0: थैंक यू सर। ये थे हमारे कॉलर सोनू जी, और जैसा कि आज मैंने अपना टॉपिक लिया था कि आप ग्रेटिट्यूड देना बहुत ज़रूरी है, और ये सचमुच ग्रेटिट्यूड देते हैं और इनको अच्छा फील करता है। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर, जस्ट वेट। हेलो हेलो
1: और नाम कमाओ, सब
0: हेलो
1: पैसा खुशी बांटो, भगवान
0: हेलो रेनबो,
1: के चाहिए।
0: हेलो रेनबो, हेलो हेलो।
2: हेलो,
0: हाँ सर, कौन बोल रहे हैं?
2: राधे राधे राधे।
0: हमेशा जी
1: समय
0: सर,
1: से
0: राधे
1: मैं बोल रहा हूँ,
0: राधे।
1: मेरे से कोई हमें खरोला था,
0: हेलो
1: हमें अपना मना अभी तक उसका मुलाकात भी नहीं हुआ, जो
0: हेलो
1: मुलाकात करे थे सावर है बंदर।
0: हेलो, मे भी कुछ नेटवर्क इशू है इसलिए कॉलर बात कर तो रहे थे, लेकिन चलिए ठीक है, अभी फिर से उनसे बात करेंगे। यदि वो ट्राई करते हैं, तब तक सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, फिर सुनेंगे एक प्यारा सा गीत।
1: बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: Where there's water, there's life. Come, let us adopt rain water harvesting techniques in our homes and offices. Let us build recharge pits and shafts, fix defunct bore wells, remove silt from water bodies, plant as many trees as possible. This monsoon, let us join Catch the Rain campaign.

0: ಇರಾನಿ ಚಾಯ್,
1: ಬನ್ ಮಸ್ಕಾ,
0: ಹೈದರಾಬಾದಿ ಬಿರಿಯಾನಿ,
1: ಟಂಗ್ದಿ ಕಬಾಬ್,
0: ಕುರ್ಬಾನಿ ಕಾ ಮೀಠಾ,
1: ಶಹದೂದ್ ಮಲಾಯ್.
0: ಹೈದರಾಬಾದ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬಫೇ
1: ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಡಿಶ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಸ್ಟೋರಿ ವೇಟಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಟೋಲ್ಡ್.
0: ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಜಶ್ನೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಟ್ರಿಪ್.
1: ಫ್ರಮ್ 2 to 3 PM ಎವ್ರಿ ಡೇ ಆನ್ FM ರೇನ್ಬೋ 101.9.
0: ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಫುಡ್,
1: ಇಟ್ಸ್ ಕಲ್ಚರ್, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಫ್ಲೇವರ್ ರೋಲ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಒನ್.
0: ಜಶ್ನೆ ಹೈದರಾಬಾದ್.
2: वेलकम बैक दोस्तों, यू आर लिसनिंग FM रेनबो 101.9. जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हॉबीज़ की. हॉबीज़ जिसके करने से आपके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है और दिल को सुकून आ जाता है. दोस्तों, हॉबीज़ तो मतलब उन छोटे छोटे शौकों और हमारी ज़िंदगी को सिर्फ व्यस्त करने के लिए नहीं होती है, इसको खूबसूरत बनाने के लिए होती है. अक्सर लोग कहते हैं कि मैं बहुत टेंशन में हूँ, मतलब बहुत स्ट्रेस है मेरी लाइफ में. ऐसा उनका कहना हरदम रहता है, लेकिन कभी कभी उस स्ट्रेस को कम करने का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होता है, वो है आपकी हॉबी. ज़रूरी नहीं है कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन या हर स्ट्रेस का सॉल्यूशन सिर्फ मेडिसिन से दूर किया जाए. कई बार जब मेडिसिन काम नहीं करती हैं, तब काम करती है आपकी हॉबी. हमारी पुरानी आदतों में ही छुपा है हमारा बहुत सारा सुकून. तो एक छोटी सी घटना आपको मैं सुनाती हूँ कि एक बड़ी कंपनी में काम करने वाले एक इंजीनियर से किसी ने पूछा, इतने काम के बाद भी आप हमेशा शांत कैसे रहते हैं? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मैं ना रोज़ रात को सिर्फ आधा घंटा बांसुरी बजाता हूँ. आप सुन रहे हैं ना दोस्तों, कि देखिए पूरा दिन वो काम करते हैं. यदि कोई कहे मैं तो काम करता हूँ, मैं कैसे टाइम निकालूँ, लेकिन वो पूरे काम करने के बाद भी रात में आके बांसुरी बजाते हैं. और उस आधे घंटे में, उन्होंने कहा कि उस आधे घंटे में मैं अपने काम के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता, बस संगीत और मैं. और वही आधा घंटा जिसमें अगले पूरे दिन के लिए मैं ऊर्जा, मतलब अपने शरीर को एनर्जेटिक करता हूँ. उनका कहना ऐसा था कि वो बांसुरी की आवाज़, उसको बजाना, वो बस संगीत और मैं, उसमें चला जाता हूँ और सारी जो भी परेशानियाँ आ रही हैं उनको मैं भूल जाता हूँ. कितनी सुंदर बात है. कभी कभी हमें स्ट्रेस से लड़ने के लिए दवाइयों का सहारा नहीं लेना पड़ता है, उससे थोड़ी मैं तो काम करता हूँ, मैं कैसे टाइम निकालूँ, लेकिन वो पूरे काम करने के बाद भी रात में आके बांसुरी बजाते हैं. और उस आधे घंटे में, उन्होंने कहा कि उस आधे घंटे में मैं अपने काम के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता, बस संगीत और मैं. और वही आधा घंटा जिसमें अगले पूरे दिन के लिए मैं ऊर्जा, मतलब अपने शरीर को एनर्जेटिक करता हूँ. उनका कहना ऐसा था कि वो बांसुरी की आवाज़, उसको बजाना, वो बस संगीत और मैं, उसमें चला जाता हूँ और सारी जो भी परेशानियाँ आ रही हैं उनको मैं भूल जाता हूँ. कितनी सुंदर बात है. कभी कभी हमें स्ट्रेस से लड़ने के लिए दवाइयों का सहारा नहीं लेना पड़ता है, उससे थोड़ी मतलब उसे थोड़ी देर के लिए दूर जाने की ज़रूरत है. मुझे पता है, ऑफिस में हो, चाहे स्कूल में हो, चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या घर की छोटी मोटी सी नोकझोंक हो, जब आप इन सब में फंस जाते हैं तो थोड़ा सा पॉज लीजिए और इस पॉज के बाद आप करिए अपने मन का कोई भी काम जो आपको सुकून देता है. ये बातें मेरी चलती रहेगी, उसके पहले सुनते हैं एक छोटा सा प्यारा सा गाना.

वेलकम बैक दोस्तों, यू आर लिसनिंग एफएम रेनबो 101.9 विथ योर आरजे सुरभि। हम आज बात कर रहे हैं हॉबी की। हॉबी या शौक भी जिसे कहते हैं, अगर इंसान के पास कोई शौक है तो वह कभी अकेला महसूस नहीं करता, क्योंकि उसका शौक हमेशा उसका सबसे अच्छा साथी बन जाता है। जरा याद कीजिए बचपन के रविवार, सुबह देर तक सोना, दोस्तों के साथ खेलना और कॉमिक्स पढ़ना, साइकिल चलाना या छत पर बैठकर बादलों को देखना, और कभी-कभी रात में तो तारों को भी गिनना। सो फनी ना, लेकिन उस समय शायद हमें पता भी नहीं था कि ये छोटी-छोटी बातें हमारे मन को कितना हल्का कर देती थीं। आज जिंदगी तेज हो गई है, हर किसी के हाथ में मोबाइल है, लेकिन कई बार मन फिर भी खाली खाली लगता है। जी हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि स्क्रीन हमें जानकारी तो देती है लेकिन हमेशा सुकून नहीं देती। सुकून अक्सर उन कामों में मिलता है जहाँ हमें दिल से सुकून सुकून हमें उन कामों से मिलता है जहाँ हमारा मन लगता है। तो अपने सुकून वाले काम करते रहिए, जब तक आपके लिए मैं बजाती हूँ एक अच्छा सा खूबसूरत।

नहीं करना है बल्कि खुद को बेहतर महसूस कराना है। तो अपनी हॉबीज़ को अपने साथ रखिए और अपने सुकून को लाइफ में बढ़ाते जाइए इन हॉबीज़ के साथ। चलिए सुनते हैं तब तक एक प्यारा सा गीत।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: Where there's water, there's life. Come, let us adopt rain water harvesting techniques in our homes and offices. Let us build recharge pits and shafts, fix defunct borewells, remove silt from water bodies, plant as many trees as possible. This monsoon, let us join Catch the Rain campaign.

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: FM Rainbow 101.9

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हाल।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

ये आकाशवाणी हैदराबाद है, FM 101.9 MHz पर, और हमें आप सुन रहे हैं मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर। सामाइन, स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त 9:30 और 20 सेकंड्स हो चुके हैं। अब पेश खिदमत है उर्दू प्रोग्राम नायरंग। सामाइन, प्रोग्राम नायरंग का आगाज़ हुआ चाहता है, उससे पहले आइए सुनते हैं एक अच्छी बात। दोस्तों, ज़िंदगी के सफ़र में मुश्किलात और कठिन लम्हात आते हैं। अक्सर लोग उन मुश्किलात और कठिन लम्हात को देखकर घबरा जाते हैं और पीछे हट जाते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि यही मुश्किलात हमें मज़बूत बनाती हैं। मुश्किलात हमें ये सिखाती हैं कि सब्र और हौसला कितना कीमती है। हर कठिन लम्हा दरअसल एक मौका होता है कि हम अपनी सलाहियतों को पहचानें और अपनी सलाहियतों को बढ़ाएं। पीछे हटने से ज़िंदगी आसान नहीं होती, बल्कि आगे बढ़ने से हम अपनी असल ताकत को दरियाफ्त करते हैं। ज़िंदगी एक दरिया की मानिंद है, जिसमें कभी लहरें पुरसकून होती हैं और कभी तूफ़ानी। जो शख्स तूफ़ान का सामना करता है, वही साहिल तक पहुंचता है। मुश्किलों का सामना कर, न डर के रुक जा। मुश्किलों का सामना कर, न डर के रुक जा। अंधेरों के बाद ही रोशनी का सूरज निकलता है। हौसले को थाम ले, उम्मीद को जिंदा रख। हौसले को थाम ले, उम्मीद को जिंदा रख। जिंदगी का हर सफर सब्र से ही मुकम्मल होता है। जी हाँ सामाइन, मुश्किलों में ना घबराएं, मुश्किलों में सब्र से काम लें, क्योंकि हर मुश्किल के बाद आसानी ज़रूर है। इसी पैगाम के साथ, सामाइन, इस मैसेज के साथ आइए शुरुआत करते हैं नायरंग प्रोग्राम की।

0: गीत सुरीले गाते जा। इस सिलसिले के तहत कुछ मेरी पसंद के फिल्मी नगमे पेश किए जाएंगे। पयाम शब पेश करेंगे जनाब नदीम अख्तर जैदी, और रात 11 बजे नारंग प्रोग्राम अपने अख्तिताम को पहुंचेगा। तो चलिए सामाइन, नारंग प्रोग्राम का आगाज करते हैं और समाप्त करते हैं खिरात कलाम पाक।
1: अऊज़ु बिल्लाहि मिनश

0: मौसम सरमा में जो झुर्रियां आ जाती है, फाइन लाइंस आ जाते हैं, वो इसके इस्तेमाल से चली जाती है। ये विटामिन ए और विटामिन ई से भरपूर होता है और इसे बच्चे और जिन अशखास की जिल्द बहुत ही हसास होती है, यानी सेंसिटिव स्किन वाले लोग भी इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसका और एक फायदा ये है कि ये नॉन कॉमिडोजेनिक होता है। इससे मुराद ये है कि हमारे चेहरे पे जो मसामात होते हैं, अक्सर वो क्रीम के इस्तेमाल से बंद हो जाते हैं। तो ये मसामात क्लॉग होने की वजह से लोग जिन लोगों को मुहासे होते हैं या एक्ने, ब्लैक हेड्स होते हैं, वो अक्सर क्रीम वगैरह इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन ये उन अशखास के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है और वो ये बिना कोई झिझक के ये इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: और किस तरह से हम परहेज करना चाहिए?
0: देखिए, परहेज के बारे में चंद चीजों का

0: ये उन अशखास के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है और वो ये बिना कोई झिझक के ये इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: और किस तरह से हम परहेज करना चाहिए?
0: देखिए, परहेज के बारे में चंद चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। मौसम सरमा में, क्योंकि हमारे जिस्म से, जिल्द से जो कुदरती तेल रहते हैं वो गायब हो जाते हैं, तो इस बात का ख्याल रखें कि जब आप हमाम में जाएं तो 10 मिनट से ज़्यादा ना रहें और ज़्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि गर्म पानी के इस्तेमाल से बाल गिरने लगते हैं और क्योंकि मसामात खुल जाते हैं, तो इसीलिए हेयर रूट्स जो रहते हैं वो बहुत ढीले या लूज हो जाते हैं और बाल झड़ने का सबब बन जाते हैं। और एक दूसरी बात ये है कि गर्म पानी के इस्तेमाल से हमारी जिल्द में जो कुदरती ऑयल होते हैं वो भी ज़ाया हो जाते हैं, तो इस बात का ख्याल रखें कि ज़्यादा देर तक आप हमाम में ना रहें और ज़्यादा गर्म पानी इस्तेमाल ना करें। चेहरे को रास तौर पे ठंडी हवा से कांटेक्ट में आने ना दें।
1: बहुत ही मुफीद बातें सुनने आ रही है। ये था कि सर्दी में, जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे बाल, तो बाल सबसे ज्यादा रूखे भी हो जाते हैं और बेजान, तो इसकी और कोई वजाहत भी, वजह है इसकी?
0: जी, सर्दी में बाल खुश्क इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि बालों में जो रुतूबत या नमी होती है वो सर्दी खींच लेती है। सर्दी की वजह से अक्सर लोग देखा जाता है कि वो बहुत ही ज़्यादा गर्म पानी नहाते हैं, बाल उससे धोते हैं, इसी वजह से बाल रूखे हो जाते हैं।
1: अच्छा, तो अब बाल का जब जिक्र आ रहा है, तो यूनानी में कोई ऐसी चीज़ है या किस तरह से इसकी देखभाल या इसका तरीका कुछ बताएं आप?
0: जी, अफजल तो ये होगा कि जब हम बालों को तेल लगाएं या मालिश करें, तेल को थोड़ा सा नीम गर्म कर लें और लगाएं बालों की जड़ों में, हल्का सा उंगलियों के पोरों से, जो पोरे होते हैं उंगलियों के टिप्स, फिंगर टिप्स जिसे कहते हैं, उससे हल्का सा मालिश या मसाज करें। घर पर आमतौर पर ये तैयार किया जा सकता है। आप 3 चमचे जैतून का तेल ले लें और 2 चमचे रोगने नारियल यानी कि खोपरे का तेल और 1 चमचा रोगने बेदे अंजीर यानी अरंडी का तेल और एक उसमें दालचीनी का टुकड़ा डाल दें, 3 लौंग के टुकड़े या पीसेस डाल दें और 1 विटामिन ई की कैप्सूल डाल दें। इन सब को अच्छी तरह से मिलाकर गरम करें और ये तेल को फिर आप उतार कर रख लें। हफ्ते में 2 बार आप इस तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: जी, मसला जो आम है वो है होठों का फटना। सरमा में होंठ इतने खुश्क क्यों हो जाते हैं?
0: जी, अक्सर ये देखा जाता है कि सर्मा में लोगों को अक्सर शिकायत रहती है कि होंठ फट जा रहे हैं और बांस के होंठ इतने खुश्क हो जाते हैं कि कभी उससे खून भी निकलना शुरू हो जाता है। ये कैफियत इसीलिए होती है क्योंकि हमारे जो होंठ होते हैं उसमें कुदरती तौर पर ऑयल ग्लैंड्स नहीं होते हैं, यानी कि जो रोगनी गुदूद होते हैं वो होंठ में नहीं होते हैं, इसीलिए ये कैफियत पाई जाती है मौसम सरमा में।
1: जी, तो अब होठों की हिफाजत के लिए भी आप अगर कुछ टिप्स बताएं।
0: जी हाँ, सबसे आसान ये है कि घर में आप एक विटामिन ई की कैप्सूल ले लें, इसमें आधा चम्मच शहद डालें और आधा चम्मच रोगने नारियल यानी खोपरे का तेल डालें, 1 चम्मच पेट्रोलियम जेली जो होती है वो डालें, इन सबको अच्छी तरह से मिला लें और होंठ पर लगाएं। दूसरा ये होता है कि हर घर में मलाई होती है, आप ये मलाई को लिप मास्क के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। मलाई में थोड़ा सा शहद डालें और 5 मिनट तक आपके होंठ पर लगा के रखें। इससे जिन अशखास के होंठ में क्रैक्स आ जाते हैं वो बहुत ही मुलायम हो जाएंगे। और एक आसान नुस्खा ये है कि आप गुलाब की पत्तियां लें, इसमें थोड़ा सा दूध डालें और कुछ देर बाद आप अपने होठों पर लगा लें। इससे जो नेचुरल पिंक कलर, गुलाबी रंग होता है, वो बहाल हो जाएगा।
1: डॉक्टर इरफाना, आप अगर बच्चों के

0: भी है वो भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यही नहीं बल्कि जो लोगों के घुटनों में दर्द रहता है वो आमतौर पर घर के बड़े बुजुर्ग तिल के लड्डू का जिक्र करते हैं, तो आप तिल के लड्डू का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह आप मेथी के लड्डू का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर माश के लड्डू भी बना सकते हैं, और जोड़ों की दर्द को दूर करने के लिए ये नुस्खा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि बादाम आप आधा कप ले लें, अखरोट आधा कप ले लें, 4 अदद अंजीर लें, खजूर 3 अदद लें, बड़ा चम्मच देसी घी ले लें और 2 बड़े चम्मच तिल ले लें। इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि बादाम अखरोट को हल्का सा भून लें, फिर अंजीर और खजूर को पीस लें, घी में तिल को हल्का सा भूने, फिर इन सब को मिलाकर अच्छी तरह से मिलाकर लड्डू बना लें और इस्तेमाल करें।
1: जी डॉक्टर इरफाना, आप और यूनानी जो डिटॉक्स कहते हैं, ओके, उसका भी कुछ एक का या जो मौसमी इसमें कुछ मुफीद हो तो वो भी अगर आप कुछ बताएं हमारे सामाइन।
0: जी, इस मौसम में बलगम की ज्यादती हो जाती है, जिस वजह से अक्सर तनफ्फुसी अमराज, खांसी, जुकाम वगैरह हो जाते हैं। तो इसे नज़ुज देने या डिटॉक्स करने का घर पर आसान तरीका या नुस्खा ये है, आप अजवाइन 1 चम्मच ले लें, नीलगिरी का जो होता है तेल वो 2 कतरे लें, 1 लौंग ले लें, तुख्मे करफ्स, ये आपकी मर्जी तुख्मे करफ्स ले या ना ले, इन सब को पानी में उबालकर इसकी स्टीम यानी भपारा ले। इससे होगा ये कि साइनसेस जो होते हैं वो क्लियर हो जाएंगे, जो बलगम फंसा हुआ है या गाढ़ा हो चुका है वो पतला हो जाएगा और निकल जाएगा, फेफड़ों को तकवियत मिलेगी और फ्लू से बचाव होगा।
1: जी बहुत अच्छी बातें और टिप्स ये मौसम सरमा के ताल्लुक से हासिल हो रहे हैं। सामाइन के लिए कोई अच्छा मौसम सरमा का कोई ख़ास जूस जो हर कोई इस्तेमाल कर सकते हैं।
0: जी, अक्सर मौसम सर्मा में लोग पानी नहीं पीते हैं, यानी पानी का इस्तेमाल बहुत कम हो जाता है। तो अगर आप एक ऐसा जूस लें जिससे आपको हाइड्रेशन भी मिले और तकवियत ही मिले, तो उसके लिए आप ये नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 अदद गाजर ले लें, चुकंदर आधा, अनार के जो दाने होते हैं वो 1 आधा कप दाने ले लें, और नींबू के रस के चंद खतरात लें, शहद 1 आधा चम्मच शहद लें, इन सब का जूस तैयार कर लें और हल्का सा गर्म करें और फिर आप इससे इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे खून साफ हो जाएगा, खुवते मदाफियत बढ़ जाएगी, जिल्द चमकदार हो जाएगी और जो खुश्की जिस्म पे है वो भी खत्म हो जाएगी।
1: डॉक्टर साहिबा, ये अरफे अजीब ये क्या है और इसका इस्तेमाल कैसे करें?
0: जी, अरखे अजीब एक बहुत ही मशहूर और मारूफ यूनानी दवा है जिसका इस्तेमाल अंदरूनी और बैरूनी दोनों तौर पर किया जा सकता है। इसके 3 अहम अज्जा होते हैं, पुदीना, अजवाइन और काफूर। अगर इसके चंद खतरे गर्म पानी में डालकर इस्तेमाल करें या इसका भपारा लें, तो इससे सर्दी, जुकाम, खांसी, साइनस और जिसके गले में खराश हो, इन सब चीजों में ये फायदेमंद होगा।
1: जी, यूनानी तिब के मुताबिक सर्दी में पहने जाने वाले कपड़ों के बारे में भी कुछ आप जानकारी देंगे?
0: जी हाँ, यूनानी निजाम के मुताबिक कपड़े सिर्फ फैशन के लिए नहीं बल्कि मिजाज को मुतवाजन रखने के लिए पहने जाते हैं। सर्दी का मौसम बारिद याबिस होता है, इसीलिए कपड़े ऐसे पहने जिससे जिस्म में गर्माहट आए या ये गर्मी को कैद करके रखे, जिल्द को खुश्की से बचाए, हवा को सीधे जिस्म तक ना आने दे। ऐसे कपड़े पहने जिससे हमारे जोड़े और मफासिल गर्म रखे जाएं, बलगम बनने से रोके। सबसे बेहतरीन कपड़े इस मौसम में ऊन के कपड़े होते हैं, क्योंकि ऊन का मिजाज हार याबिस होता है।

0: ये सर्दी की ठंडक और खुश्की को तवाज़ुन में रखते हैं, जिस्म की गर्मी को कैद करते हैं। हाइपोथर्मिया, सर्दी, जुकाम, जोड़ों का दर्द रोकते हैं। यूनानी तरीक़े इलाज में एक हैवी या दबीज कपड़े पहनने से बेहतर मल्टीपल थिन लेयर्स या ज़्यादा परत वाले कपड़ों को पहनना बेहतर समझा जाता है। जैसा कि आप अंदर एक कॉटन के कपड़े पहने, फिर उसके ऊपर ऊनी कपड़े पहने और सबसे ऊपर शॉल, जैकेट वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह लेयरिंग से जिस्म में हरारत रेगुलेट होती रहती है, पसीना नहीं जमता और इन्फेक्शन का खतरा कम हो जाता है। गर्दन और पसीने को गर्म रखें, इससे बलगम नहीं बनेगा, जुकाम, साइनस, खांसी से महफूज रहेंगे। सर और पैर को सर्दी में हिफाजत दो तो जिस्म के अक्सर बीमारियां दूर रहते हैं। कान ढांक कर रखें, क्योंकि सर्दी जिस्म में कान से ही दाखिल होती है।
1: वक्त को नज़र रखते हुए मैं एक सवाल ये करना चाहूँगी, किस रंग के कपड़ों का इस्तेमाल करें, इसके बारे में भी डॉक्टर इरफाना आप कुछ बताएं।
0: जी, गर्म रंग के कपड़े सर्दी में बेहतरीन होते हैं, जैसे कि लाल रंग के कपड़े या फिर सुनहरी, गहरा ब्राउन कलर, काले रंग के कपड़े या फिर मरून कलर। ये रंग की खासियत होती है कि ये गर्मी जज्ब करते हैं और जिस्म को गर्म रखते हैं।
1: डॉक्टर इरफाना तस्नीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप आकाशवाणी हैदराबाद स्टूडियो पे तशरीफ़ लाए हैं और अपने ख्यालात का इजहार किए। आप सामाइन सुन रहे थे डॉक्टर इरफाना तस्नीम को मौसम सरमा के मौजू पर अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे।
2: नए रंग में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर माइक पर सिलसिले के तहत इंटरव्यू, डॉक्टर इरफाना तस्नीम से इंटरव्यू। और इस इंटरव्यू का मौजू था मौसम सरमा में अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखें। डॉक्टर साहब से बात कर रही थी मोहतरमा तलहा जबीन। आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नए रंग और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी हैदराबाद FM 101.9 MHz।
3: FM रेनबो 101.9।
2: आकाशवाणी हैदराबाद FM रेनबो पर आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नए रंग। नए रंग प्रोग्राम के अब उस हिस्से में हम दाखिल हो रहे हैं सामाइन, जहां से पेश होता है गीत सुरीले गाते जा, जिसका हम और आप बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। और बेसब्री से इंतज़ार इसीलिए होता है ताकि हम सुन पाएँ ऐसे सुरीले नगमे जिन्हें हम बार बार सुनना पसंद करते हैं। तो चलिए सामाइन, शुरुआत करते हैं गीत सुरीले गाते जाके। सामाइन, कभी कभी जिंदगी हमें मुश्किल जरूर लगती है, मगर जीना भी जरूरी होता है, क्योंकि उम्मीद और आशाओं के बगैर इंसान का सफर अधूरा है। आशाएं हमें बताती हैं, उम्मीदें हमें बताती हैं कि हर काली रात के बाद सवेरा जरूर आता है, और यही यकीन हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। अंधेरों को देखकर मायूस ना हो, क्योंकि रोशनी करीब ही है। उम्मीद वो बीज है जो दिल में बोया जाए तो सब्र और हौसले के फूल खिलते हैं। जिंदगी का असर कभी कभी जिंदगी हमें मुश्किल जरूर लगती है, मगर जीना भी जरूरी होता है, क्योंकि उम्मीद और आशाओं के बगैर

इंसान का सफर अधूरा है। आशाएं हमें बताती हैं, उम्मीदें हमें बताती हैं कि हर काली रात के बाद सवेरा जरूर आता है, और यही यकीन हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। अंधेरों को देखकर मायूस ना हो, क्योंकि रोशनी करीब ही है। उम्मीद वो बीज है जो दिल में बोया जाए तो सब्र और हौसले के फूल खिलते हैं। जिंदगी का असल हुस्न इसी जिद्दोजहद और इंतजार में है कि हर मुश्किल के बाद आसानियां आएगी। अंधेरों के बाद सवेरा जरूर होगा, हौसले के साथ सफर सहारा जरूर होगा। उम्मीद को थाम ले, आशाओं को जिंदा रख। उम्मीद को थाम ले, आशाओं को जिंदा रख। जिंदगी का हर लम्हा सितारा जरूर होगा।

दोस्तों, ज़िंदगी में डर कर और हार मान कर रुक जाना इंसान को कहीं नहीं ले जाता। असल कामयाबी तो इसी में है कि हम मुश्किलात का मुकाबला करें, क्योंकि कांटों पर चलने के बाद ही बाहर के साए नसीब होते हैं। मुश्किलात हमें सब्र और हौसले की तालीम देती हैं। जो शख्स कांटों से गुजरने का हौसला रखता है, वही फूलों की खुशबू तक पहुंचता है। जिंदगी का हुस्न इसी जिद्दोजहद में है कि हर रुकावट को उबूर करके आगे बढ़ा जाए। कांटों पे चल के ही बहार मिलेगी, हौसले से ही हर दीवार ढलेगी। डर के रुकना नहीं, आगे बढ़ते रहो, अंधेरों के बाद ही रोशनी खिलेगी।

किशोर कुमार को आपने सुना। आप सुन रहे हैं नायरंग प्रोग्राम, और नायरंग प्रोग्राम में पेश हो रहा है गीतों का सफ़र। जी हाँ सामाइन, हमारी मुराद है गीत सुरीले गाते जासे। और बात हो रही है जिंदगी की मुश्किलों को किस तरह से उबूर किया जाए और किस तरह से अपने आप को एक कामयाब इंसान बनाया जाए, जिंदगी की कठिनाइयों को किस तरह से दूर किया जाए, किस तरह से उन मुश्किलों से लड़ा जाए। क्योंकि सामाइन, किसी शायर ने खूब कहा है कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। जिंदा होना सिर्फ सांस लेने का नाम नहीं, बल्कि अपने वजूद को रोशनी, हरकत और असर के साथ जाहिर करना है। अगर इंसान जिंदा है तो उसकी ज़िंदगी में अमल, जज्बा और मकसद भी झलकना चाहिए। जिंदा रहने का मतलब है कि हम अपने किरदार और अमल से दुनिया को रोशनी दें। खामोशी में जिंदगी का हुस्न खो जाता है, लेकिन हरकत और जिद्दोजहद में जिंदगी की असल पहचान है। जिंदा नजर आना यानी अपने ख्वाबों, उम्मीदों और अखलाकी कदरों को अमली सूरत देना है। जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। हौसले से आगे बढ़ना यही रोशनी है। खामोशी में नहीं अमल में पहचान है, जिंदगी का असल रंग जिद्दोजहद की जान है।

0: आकाशवाणी हैदराबाद FM 101.9 MHz पर आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नयरंग, और नयरंग प्रोग्राम में सुरीले गीतों का प्रोग्राम पेश हो रहा है। गीत सुरीले गाते जा।
1: FM Rainbow 101.9।
0: दोस्तों, जब इंसान मुश्किलात से डरता नहीं और अपने कदमों को मजबूती से जमाए रखता है तो कामयाबी उसके कदम चूमती है। ऐसा लगता है जैसे उसने हर मैदान फतह कर लिया हो, क्योंकि असल फतह दिल के हौसले और इरादे की होती है। मुश्किलात से भागने वाला कभी मंजिल तक नहीं पहुंचता। जो शख्स डट कर खड़ा रहता है वही तारीख में अपनी पहचान छोड़ता है। फतह सिर्फ मैदान जंग में नहीं बल्कि जिंदगी के हर इम्तिहान में सब्र और इस्तेखामत से हासिल होती है। कदम जमाए रख, न डर के रुक जा, मुश्किलों के पार ही मंजिल का चिराग जलता है। हौसले से लड़, यकीन को थाम ले, हर मैदान में फतह सब्र से ही मिलता है।

दोस्तों, ज़िंदगी में अपने मकसद, कामयाबी और लक्ष्य यानी मुकर्रर टारगेट तक पहुंचने के लिए मुसलसल कोशिशें जारी रखना ही असल कामयाबी का राज है। मंजिल तक पहुंचने का सफ़र आसान नहीं होता, लेकिन जो शख्स हिम्मत और इस्तेकामत के साथ चलता है, वही अपनी मंजिल को पा लेता है। मकसद के बगैर ज़िंदगी एक बेसिमत कश्ती की मानिंद है। मुसलसल कोशिशें इंसान को न सिर्फ मंजिल तक ले जाती हैं, बल्कि रास्ते में उसे मज़ीद मज़बूत भी करती हैं। नाकामी वक्ती है, लेकिन कोशिश मुस्तकिल होनी चाहिए। कोशिशों के बगैर मंजिल नहीं मिलती।

भी कमज़ोर पड़ जाती है। दूसरों का सहारा वक्ती होता है, मगर खुद पर एतमाद मुस्तकिल क़ुव्वत है। मुश्किलों में अगर इंसान अपने दिल को मजबूत रखे तो वही दिल उसका सबसे बड़ा साथ बन जाता है। तन्हाई का एहसास उसी वक्त कम होता है जब हम अपने आप को कबूल करते हैं और अपनी जिद्दोजहद को जारी रखते हैं। जिंदगी के सफर में ऐसे लम्हे आते हैं जब हर साया साथ छोड़ देता है और इंसान खुद को तन्हा महसूस करता है, मगर यही वो वक्त होता है जब इंसान को अपने अंदर झांकना चाहिए और अपने आप को सहारा देना चाहिए। खुद पर एतमाद और अपने मकसद से जुड़े रहना ही असल ताकत है। जो शख्स अपने दिल को मजबूती से थाम लेता है वो तन्हाई को शिकस्त देता है और मुश्किलात को फतेह में बदल देता है।

मुकेश के गाए हुए इस गीत के साथ ही सामाइन गीत सुरीले गाता जा, इस सिलसिले का सफ़र अब यहीं पर ख़त्म होता है। हम उम्मीद करते हैं कि ज़िंदगी की मुश्किलों और कठिनाइयों के बारे में जो भी बातें बताई गईं और ज़िंदगी की मुश्किलों को किस तरह से उनका सामना किया जाए, गानों के ज़रिए हमने आप तक हमारी बात रखने की कोशिश की। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी ये बताई गई बातें आपको पसंद आई होंगी और हमारे ये जो सुनाए गए गीत आपने पसंद किए होंगे। इसी उम्मीद के साथ सामाइन, प्रोग्राम नए रंग का अख्तिताम हम करना चाहेंगे। उससे पहले आइए सुनते हैं पयाम शब। तहरीर व पेशकश है जनाब सैयद नदीम अख्तर ज़ैदी की।

0: हाँ ठीक है, मैं अपनी अना का मरीज हूं, आखिर मेरे मिजाज में क्यों दखल दे कोई। ये शेर इंसान की खुददारी और अना के दरमियान बारीक फर्क की तरफ तवज्जो दिलाता है। शायर बज़ाहिर अपनी अना का एतराफ़ करता है, लेकिन साथ ही ये भी कहता है कि दूसरों को इसकी शख्सियत और मिजाज में बेजा मुदाखलत का हक नहीं। इस शेर से ये सबक मिलता है कि अपनी राय, मिजाज और शख्सियत पर कायम रहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ये कैफियत अना और जिद में तब्दील हो जाए तो इंसान सच्ची नसीहत और खैरख्वाही से भी महरूम हो जाता है। बाज़ औक़ात दूसरों की बात सुन लेना और अपनी गलती मान लेना कमज़ोरी नहीं बल्कि अक्लमंदी की अलामत है। खुददारी को बरकरार रखो, मगर अपनी अना को अपने ऊपर गालिब ना आने दो। जो शख्स हर मशवरे को मुदाखलत समझता है, वो अपनी इस्लाह के मौके खो देता है। विकार इंसान को बुलंद करता है, लेकिन अना इंसान को तन्हा कर देती है। अपने मिजाज की हिफाजत जरूर करो, मगर दिल और जहन को अच्छी नसीहत के लिए खुला रखो।
1: पयाम शब में एक नसीहत आमेज़ बात हमने समात की सामाईन। इसके साथ ही आज का उर्दू प्रोग्राम नए रंग अब अपने अख्ताम को पहुँचता है। हमें इजाज़त दीजिए, शब बखैर। चंद ही लम्हों में अंग्रेज़ी समाचार और हिंदी समाचार बारी बारी से दिल्ली से नशर किए जाएंगे। पहले सुनिए हिंदी समाचार।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे।

0: हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत समारोह में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों को भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखने और भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच अटूट संबंधों को मजबूत करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि संगीत में लोगों को एकजुट करने की अनूठी क्षमता होती है और आज की प्रस्तुति ने भारत न्यूजीलैंड की मित्रता की गर्मजोशी और गहराई को खूबसूरती से प्रतिबिंबित किया है। यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में यह पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत की राजदूत मुआन पुई साइवेई ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते से कई क्षेत्रों में मिलकर काम करने का बड़ा अवसर है।
1: फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी।
2: मुक्त व्यापार समझौता भारत और न्यूजीलैंड के लिए साथ मिलकर काम करने का एक बड़ा अवसर है। न्यूजीलैंड बागवानी, डेयरी और कृषि जैसे प्राथमिक उद्योगों में बेहद मजबूत है, जबकि भारत के पास कुशल मानव संसाधन और विशाल कार्यबल है। साथ ही न्यूजीलैंड से निवेश की भी अच्छी संभावनाएं हैं। यदि दोनों देश मिलकर साझेदारी करें और नवाचार को आगे बढ़ाएं, तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा और हम अपने उत्पादों व समाधानों को वैश्विक बाजारों तक भी पहुंचा सकेंगे।
1: एंड देन वी कैन सेल टू फर्दर मार्केट्स एज वेल।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात में दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, रक्षा और साइबर तथा AI क्षेत्रों पर केंद्रित रही। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा से दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी के विश्वास और मजबूती का पता चलता है। ओमान के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और ओमान के बीच सदियों पुराने समुद्री संबंध दोनों देशों के लोगों को सदियों से जोड़ते रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता का सबसे बड़ा संरक्षक बना रहेगा। उन्होंने आज विशाखापत्तनम में नौ सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि बदलते वैश्विक सुरक्षा माहौल में भारतीय नौसेना देश के समुद्री हितों की प्रभावी ढंग से रक्षा कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत के 90% से अधिक व्यापार का परिवहन समुद्री मार्गों से होता है, इसलिए समुद्री सुरक्षा देश की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। रक्षा मंत्री ने कहा कि स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट महेंद्रगिरी का नौसेना में शामिल होना रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने आज संसद के मानसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। कोयला मंत्रालय ने आज वाणिज्य कोयला ब्लॉकों की नीलामी के 15वें चरण और 13वें और 14वें चरण के दूसरे प्रयास की बोलियां बोली। मंत्रालय के अनुसार नीलामी के लिए पेश किए गए 23 कोयला ब्लॉकों में से 8 के लिए कुल 21 बोलियां प्राप्त हुई हैं। मंत्रालय ने कहा कि इस नीलामी में 16 कंपनियों ने भाग लिया, जो देश के वाणिज्य कोयला खनन में उद्योग जगत की मजबूती भागीदारी को दर्शाता है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात 12:30 बजे स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। इससे पहले आज फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani, the news read by Abhineet Shukla. Prime Minister Narendra Modi received a warm and enthusiastic welcome upon his arrival in Auckland, marking the start of his historic two-day visit to New Zealand.

0: Namaskar and welcome to Market Mantra. I am Lalema Aneja Dang and with me is my co-anchor Nikhil Kumar. And to discuss the stories, we are joined in our studio by economic expert Udayan Ray. Namaskar Udayan and welcome to Akashwani.
1: Namaskar Lalema.
2: नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में हम एक बार फिर हाजिर हैं और इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आइए सुनते हैं मुख्य समाचार।
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडेक्सेस गेन ओवर 1%, सेंसेक्स एड्स मोर देन 800 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स अबव 24,200। मोस्ट एशियन स्टॉक मार्केट इंडेक्सेस एंड इन पॉजिटिव टेरिटरी एंड ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस राइज।
2: घरेलू शेयर बाजार में आज 1% से अधिक की बढ़त, सेंसेक्स में 800 से अधिक अंकों का उछाल, वहीं निफ्टी 24,200 से ऊपर बंद हुआ। एशिया के प्रमुख शेयर सूचकांकों में तेजी देखी गई और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी।

0: Well, before we move ahead, here's a disclaimer for all our listener friends. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not that of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: घरेलू शेयर बाजार आज 1% से अधिक की बढ़त के साथ बंद हुए। बाजार में अच्छे खासे खरीदारी के कारण ये तेजी देखी गई। सेंसेक्स 828 अंक चढ़कर 77,569 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 244 अंक चढ़कर 24,207 पर पहुंच गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर विस्तृत बाजार में मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स ने आज बेहतर प्रदर्शन किया। मिड कैप में 1.4% का उछाल आया, जबकि स्मॉल कैप में 1.5% से अधिक की वृद्धि हुई। दोनों सूचकांकों ने कारोबार के दौरान 52 हफ्ते के अपने नए उच्चतम स्तर को छुआ। इससे पहले आज वैश्विक बाजार से मिले सकारात्मक संकेतों के बीच भारतीय शेयर बाजार बढ़त के साथ खुले थे और पूरे दिन हरे निशान के साथ कारोबार हुआ।
0: Benchmark domestic equity indices ended over 1% higher today, led by broad-based buying. The Sensex rose 828 points to close at 77,569. Nifty also climbed 244 points to settle at 24,207. The broader markets on the National Stock Exchange outperformed the frontline indices. The mid-cap 100 advanced 1.4%. Small-cap 100 climbed more than 1.5%. Both the indices touched their fresh 52-week highs during the trading session. Earlier today, the benchmark indices opened higher amid positive global cues and maintained upbeat momentum throughout the session.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 25 कंपनियों ने बढ़त दर्ज की। सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों में रिलायंस 2.3% ऊपर आई। टेक महिंद्रा और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में लगभग 2.2% की तेजी देखी गई और एक्सिस बैंक 1.9% के लाभ में रहा। वहीं दूसरी तरफ एटर्नल में 0.9% की गिरावट आई। भारतीय एयरटेल 0.5% लुढ़क गया और सन फार्मा में 0.2% की सुस्ती दर्ज की गई।
0: In the sectoral indices on the BSE, all 25 sectors ended in positive zone. Among the top gainers, Realty jumped 3.4%, PSU banks rose over 3.2%, and mid-small private banks' quality tilt added more than 2.5%. The overall market breadth at the BSE was positive, as shares of 2,883 advanced, 1,377 companies declined, and 174 remained unchanged.
1: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 6 पैसे मजबूत होकर 95.32 रुपए पर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं के तुलना में अमरीकी डॉलर की मजबूती को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार में 100.86 पर कारोबार कर रहा था। उद्यन जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद निखिल जी।
0: So then, we've been seeing that the markets have been

0: very volatile, and if I may take your position as an expert, partly and in lighter vein, and say that much has been dependent on the utterances of President Trump. How do you view the geopolitical situation and other factors affecting the markets, although they have ended 1% higher today, over 1% higher today? How do you view these factors and what other factors, if at all?
1: Well, Lalima, I would say that it's basically what others also think. There's nothing very unique in what I'm going to say, that the TCS results, the it's like a bellwether. From that result, market is gauging, is trying to gauge that, that IT, the impact on IT is not as tough. You know, it's not as severe as it was being thought of. So you would see that every other IT stock is doing, you know, there's a certain amount of relief, there's a certain amount. So there, the market seems to be taking a cue from there, that the IT, the situation in IT is not as dire. You know, there was this whole thing about India missing out the AI boom, and all that. So suddenly data has come in and people seem to have changed their mind. So that's number one. Second is, you mentioned statements. And despite all that is going on, the tit for tat that's going on, there seems to be, market seems to be now discerning. So other statements that are coming in, that the discussions are on and stuff like that. So market is possibly choosing to believe that. But in our case, the IT bit is something, it's not so much the individual company, but the signal that people are taking, that as to, you know, from that company that people are trying to take a signal that things may not be as difficult or as dire, and it's turned out to be a little better, and people expect that more to continue with the results coming in.
0: As they say, markets are dependent on sentiment, and the sentiment is all as well.
1: Yeah.
2: उदयन, जो आज हमने तेजी देखी लगभग 1% से अधिक की बढ़त रही है, तो ये सिर्फ एक दिन की हम तेजी मान सकते हैं, क्योंकि आज शुक्रवार का दिन है, तो आने वाले अगर सप्ताह की बात करें तो एक नए बुल रन की शुरुआत इसे माना जा सकता है। ये मार्केट जैसा दिखा कि पिछले दो सप्ताह में जैसा परफॉर्म कर रहा था, इस हफ्ते में शायद थोड़ा सा सहारा मिला है मार्केट को, जिसमें घरेलू निवेशकों से ज्यादा विदेशी निवेशकों का सहारा ज्यादा मिला, तो क्या कह सकते हैं इस पर?
1: देखिए, आपने जो विदेशी निवेशक के बारे में कह रहा हूँ, उनकी वापसी तो थोड़ी बहुत हुई है, मतलब उस लेवल की नहीं हुई है, पर वापसी हुई है। अब जो आपके जो नतीजे आएंगे उससे काफ़ी कुछ डिपेंड कर रहा है। अब जो खबरें आ रही हैं वो काफ़ी कई जगह से, कई क्षेत्रों से काफ़ी सकारात्मक है, तो उस पीछे की ये खबरें हैं जो कि आती रहेंगी। अब एक तो वहाँ से आएंगी, जो पीछे की जो नतीजे, क्वार्टरली जो तिमाही जो नतीजे हैं, तो वहाँ पे काफ़ी कुछ रेजिलियंस देखने को मिल रहा है। जो रिपोर्ट्स अब आ रही हैं कि अप्रैल, मई, जून में काफ़ी इतने चैलेंज होने के बावजूद भी वो सेक्टर, FMCG मानिए, बाकी मांगे, वहाँ पे एक सर्टन एक दृढ़ता देखी गई है। पर आगे चल के जो मॉनसून का जो प्रोग्रेस है, उसको, उसकी जो प्रगति है, कितना अच्छा स्प्रेड होता है, कितना कुछ कोई डेफिशिएंसी नहीं आ जाती है, एक चिंता थी, तो वो काफ़ी कुछ हेडलाइंस को, रादर मार्केट सेंटिमेंट को, मार्केट के मूवमेंट को काफ़ी हद तक प्रभावित कर सकता है। और क्योंकि आप पूरा, आपके जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पे जो खरीदारी होती है, जो कंजम्पशन, जो त्योहारों के वक्त है, तो वहाँ से वो निष्कर्ष निकाला जाएगा, वहाँ से वो आकलन किया जाएगा, और वहाँ से वो आप मान सकते हैं उसको इन्फ्लुएंस जरूर होगा, क्योंकि कंजम्पशन के जो से जुड़े हुए, खपत से जुड़े हुए जो स्टॉक्स हैं, उनके ऊपर मानसून की प्रगति का और किस क्वालिटी की वो होती है, वो काफी कुछ डिपेंड।
2: तो इसमें ये मान सकते हैं कि बाजार को आगे मुनाफा वसूली के लिए तैयार रहना चाहिए, आपका ऐसा अंदाजा है क्या?
1: नहीं, ऐसी बात भी नहीं है। आप अगर उतना मतलब कभी अगर देखिए, जो खाड़ी में जो संघर्ष है वो अभी तक वो निपटा नहीं है, एंड तो वो क्योंकि वो निपटा नहीं है, तो जब जब आपकी खबरें आएंगी, अगर वो सकारात्मक खबरें नहीं हैं, तो फिर वो उसका एक असर तो पड़ेगा, क्योंकि सीधा आप

0: प्रतिशत ऊपर आ गया। जापान का निक्केई सूचकांक 1.2% लाभ में रहा। सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स में 0.6% से ज्यादा की बढ़त दर्ज की गई और हांगकांग का हैंगसेंग सूचकांक 0.6% ऊपर चढ़कर बंद हुआ। वहीं दूसरी तरफ चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 1% नीचे आ गया, जबकि चक्रवात बावी की वजह से आज ताइवान का बाजार बंद रहा। दिन ओवर वैल्यूएशन का इस एशियाई बाजार में क्या रुख रह सकता है?
1: देखिए, ओवर वैल्यूएशन की अगर बात की जा रही है, अब तो इतना बीटन डाउन हो गया हमारे जो लार्ज कैप्स हैं, कोई अब अगर कोई कंप्लेन करे कि आप ओवर वैल्यूड है, वो तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि वो ओवर वैल्यूड सुनते सुनते ही 6-7 महीने हो गए। तो कई लोग अभी भी शायद आर्ग्यू करें, पर वहां से तो काफी मूवमेंट हुई थी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की। अब धीरे धीरे करके वो वाला जो थीम है वो शायद वो ना रहे, और कुछ दूसरे किस्म के, दूसरे कैपिटलाइजेशन के जो स्टॉक्स हैं, कई लोगों का आर्ग्यूमेंट है कि वहां पे अच्छे आपको बार्गेन्स मिल रहे हैं। अब ये तो इंडिविजुअल उसके बारे में बात है कि वो वैल्यूएशन वो कौन से को वाजिब सोचेगा, बट इट्स अभी जो जिस हाल में है वो अगर आप कोई मुझसे पूछे, वो 6 महीने 7 महीने 8 महीने पहले जो स्थिति थी उसे तो मैं कहूंगा बेहतर है। तो इसलिए अगर कोई बार्गेन, जैसे आप दुकानों में बार्गेन लेने जाते हैं, कोई डिस्काउंट मिल रहा है, कुछ मिल रहा है, अगर बार्गेन वाली बात अगर आ रही है तो शायद अब शायद बार्गेन वाली स्थिति बेहतर है वनस्पत इसके की 6-7 महीने पहले जो थी। और मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटीज हैं, और इस ये ऐसा वक्त है जहाँ पे जो रेगुलर छोटे इन्वेस्टर्स हैं म्यूचुअल फंड्स के थ्रू या जो भी अदर एनपीएस के थ्रू कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, वो मार्केट्स में वो पार्टिसिपेट जरूर करें, क्योंकि यही उससे उनका एवरेज जो खरीदारी
0: होगा,
1: जो कॉस्ट है वो एक मैनेजेबल लेवल रहेगा। जब अपवर्ड मूव होगा तो उसमें उनको गेन्स मिलेंगे।
0: राइट,
2: सो अर्लियर वी यूज्ड टू से ऑयल एंड नाउ वी से इन लाइटर वे अगेन दैट सेमीकंडक्टर इज द न्यू चिप ऑन द ब्लॉक, हूएवर हैज द सेमीकंडक्टर इज रूल्स द वर्ल्ड।
1: या व्हाट हैज आल्सो हैपेंड इज, यू नो, it happens in every market. First there are darlings, people, you stocks that you like, then you say that this is too overvalued, what do we do, is there somebody who looks like the superstar but is not a superstar yet? So that's how there are certain, even in semiconductors you find certain companies which have certainly caught the eye, and people are sort of attracted or towards those stocks. So sometimes what happens is you move towards one particular counter or stock, and then after a point of time it gets beaten down a little bit. So those things are happening, those are interesting things. Yes, semiconductors are going to be there, they're going to influence market movements, because that is going to become, one thing is there, whether you agree with me or not, the way technology has come into our lives, whether it's mobile phones or whatever, AI, so almost everything that is being offered is on a technological platform.
2: Absolutely.
1: So every company is a technology company which is offering something. So that's how we have become. And if the infrastructure is going to be based on semiconductors, then it is like oil. Data and semiconductors and stuff like that, anything related to it is going to be very crucial, and especially market sentiments and market movements is going to keep determining.
2: Right. And now look at the forex reserves. Well, India's foreign exchange reserves rose over $7.2 billion to over $674 billion during the week ended July the 3rd. According to the Reserve Bank of India data, foreign currency assets, the largest component of the reserves, increased by $4.5 billion to over $545 billion. During the week, gold reserves rose around $2.7 billion to over $105 billion.
0: इस वर्ष जून में भारतीय इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश 26% से अधिक बढ़कर 28,973 करोड़ रुपए हो गया, जबकि मई में ये 22,908 करोड़ रुपए था। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के डेटा के अनुसार जून में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी में 31,781 करोड़ रुपए का निवेश हुआ, जो मई के मुकाबले 2.7% ज्यादा है। इक्विटी में जून महीने के दौरान मिड कैप

0: फंड में सबसे ज्यादा निवेश आया, जिसकी कुल धनराशि 6000 करोड़ रुपए से अधिक रही। इसके बाद स्मॉल कैप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड, मल्टी कैप फंड और लार्ज कैप फंड का नंबर रहा। वहीं गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के मामले में रुख उल्टा हो गया। पिछले महीनों में मुनाफा वसूली के बाद इसमें 3443 करोड़ रुपए का निवेश आया। हालांकि जून में डेट फंड से निकालने पैसे का सिलसिला जारी रहा, कुल मिलाकर 1,09,000 करोड़ रुपए निकाले गए। उस दिन ये जो बदलाव हम देख रहे हैं, कहां मई में 22,908 करोड़ और अभी जून में 28,973 करोड़, क्या इससे हम कह सकते हैं कि ये एक शिफ्ट है जो म्यूचुअल फंड की तरफ जा रहा है, या बाजार का प्रभाव अभी का देखते हुए, बाजार के हाल को देखते हुए थोड़ा सा सोचने में बदलाव आया है निवेशकों के?
1: उत्साह बढ़ा है जब आपका ये कोई हमारे देश वाली बात नहीं, जहाँ पे भी मार्केट्स अच्छा करती हैं वहाँ पे उत्साह बढ़ जाता है और निवेश बढ़ जाता है, क्योंकि आप इसे रिसेंसी बायस कहते हैं बिहेवियरल फाइनेंस में, कि जो अभी अभी हो रहा है वो हमारे जो निर्णय ले रहे हैं उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, ना कि हम 3 साल 5 साल का हम नहीं देखते हैं। वैसे देखना चाहिए पर हम देख नहीं पाते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये उत्साह बढ़ा है, क्योंकि थोड़ा बेहतर इम्प्रूवमेंट हुई तो वहाँ पे ये आपने इस उत्साह को पाया। पर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है जो हम यहाँ पे कह नहीं पा रहे हैं और जो मुझे लगता है वो ये है कि एक स्तर बना रहा है। इतना कुछ हो गया तब भी हमारे निवेशक डटे रहे हैं और एक वेरी हाई लेवल ऑफ रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स होती चली जा रही है। मतलब अगर इक्विटी को, स्टॉक्स को, शेयर्स को, भारत के भविष्य के बारे में, कॉन्फिडेंस के बारे में अगर कहा जाए तो वोट वो मिल रहा है कंटिन्यूअसली हमारे निवेशक। तो कहते हैं ना कि वो शॉर्ट टर्म में स्टॉक मार्केट इज लाइक अ वोटिंग मशीन और व्हाटएवर किसी महापुरुष ने कहा था, तो वो बात यहाँ पे बिल्कुल लागू हो रही कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लगातार मिलता चला जा रहा है।
0: इसमें एक चीज और है कि ETF में लगातार निवेश बढ़ रहा है, जबकि मुनाफा वसूली भी बड़े पैमाने पर हमने देखी है बीते दिनों में।
1: देखिए मुनाफा वसूली कई बार क्या हो जाता है कि कहना बड़ा मुश्किल है। अब गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स को, गोल्ड में जो निवेश हम करते हैं उसको एक शॉर्ट टर्म उसमें ना लेके करना चाहिए, बट एनीवे अगर हो रहा है तो ऐसी कोई बात नहीं। मेरा इंटरेस्ट तो ये है कि इक्विटीज में, इसका मतलब इक्विटी कल्चर हमारे देश में आ गया है। हम रिस्क, अगर मार्केट्स डाउन जाते हम नर्वस नहीं हो जाते। पहले क्या होता, बिल्कुल खाली हो जाती थी, बिल्कुल डीमैट से डीमैट भी बिल्कुल वीरान हो जाते थे। वो चीज नहीं हो रही, वो हिम्मत है, वो स्टमक है, वो जोश जज्बा है एंड कॉन्फिडेंस, जो वोट है, वोट फॉर द फ्यूचर, वो मिल रहा है एंड वो इन खबरों से लगातार आती जा रही है।
2: Well, we've had the unprecedented number of demat accounts opened in the last 1 year, and that says it all about the Indian markets. Well, moving on, Prime Minister Narendra Modi arrived in Auckland today on the final leg of his three-nation tour. PM Modi will hold talks with his New Zealand counterpart, Mr. Christopher Luxon. Both leaders will review the entire gamut of the bilateral relationship, which has seen significant progress in the last 2 years, especially in the areas of trade, commerce and defence. In an interview to Akashvani, Dr. Rahul Sen, economist and senior lecturer at Auckland University of Technology, said the bilateral relationship between India and New Zealand has a lot of potential to grow.
3: To me, this opportunity to take the bilateral trade relationship between New Zealand and India, which I would say has a lot of potential to grow, because currently India is the 11th largest trading partner of New Zealand, not even in the top 10. And clearly, this FTA should have the potential of taking India up the ranking of New Zealand's trade easily among the top 5. This FTA is providing opportunities for investments coming in from New Zealand to India, with an aspiration of about $20 billion of investment coming in over the next 15 years.
2: Against this backdrop, Prime Minister Modi's visit assumes even greater significance. Tomorrow, he will participate in a major business event where discussions will focus on trade, investment and expanding economic cooperation between the two countries. Uden, first the Prime Minister goes to Australia, now New Zealand. Is energy security central to this whole trip and trade deal?
1: Absolutely. Lalima, you would have seen in the budget and other places the pronouncements regarding nuclear energy. Mm-hmm. So we want smaller reactors. We don't want those mega projects. And we want to crack this energy thing quite a bit. We cannot

0: become an AI, world power without having power?
1: Yes.
0: So we need that power as a critical area of power, water. Mm-hmm. So energies and also things like LNG and others, mm-hmm. those are also equally important. Coal is important. So this particular part of the globe is actually much more important that people like me normally think.
1: Yeah, and Australia has good quality and quantity of uranium. Which
0: yes, absolutely, absolutely.
1: Right.
2: अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने आज कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव दोबारा बढ़ने से 2027 में दुनिया भर में तेल की भारी अतिरिक्त आपूर्ति का उसका अनुमान गलत साबित हो सकता है। एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार जून में वैश्विक तेल आपूर्ति 4.1 मिलियन बैरल प्रतिदिन बढ़कर 98.8 मिलियन बैरल प्रतिदिन हो गई। ये बढ़ोतरी इसलिए हुई क्योंकि युद्ध विराम के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य के पास फंसे टैंकरों ने अपनी यात्राएं फिर से शुरू कर दी है। इस सुधार के बावजूद वैश्विक उत्पादन युद्ध से पहले के स्तर 9.4 मिलियन बैरल प्रतिदिन कम है। एजेंसी का अनुमान यह भी है कि इस साल वैश्विक तेल की मांग में 1 मिलियन बैरल प्रतिदिन की कमी आएगी क्योंकि 2027 में इसमें 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन की बढ़ोतरी होगी। ये 6 वर्षों में पहली वार्षिक गिरावट होगी। एजेंसी का अनुमान यह भी है कि इस साल 3.7 मिलियन बैरल प्रतिदिन की कमी के बाद अगले साल ऑयल सप्लाई में 7.7 मिलियन बैरल प्रतिदिन की बढ़ोतरी होगी।
1: And global crude oil prices rose today as renewed geopolitical concerns reignited worries about supply disruptions. Brent crude was trading 0.7% up at $76.84 per barrel. West Texas intermediate crude was trading over 0.5% up at $72.48 per barrel when reports last came in. And let's talk about the Indian bullion market, where 24-carat gold was trading 0.8% down at 1,44,720 rupees per 10 grams, while silver was trading 1.8% down at 2,22,610 rupees per kilogram a short while ago.
2: मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त अनुबंध वाला सोना 0.7% नीचे आकर 1,44,240 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि सितंबर अनुबंध वाली चांदी 1.8% की गिरावट के साथ 2,22,345 रुपए प्रति किलोग्राम पर चल रही थी। उद्यम जी, बहुत ही कम शब्दों में क्रूड ऑयल के बारे में आपके विचार क्या होंगे?
0: ये देखिए, ये जैसे जैसे वहां पे संघर्ष का कितना इम्पैक्ट होगा, क्योंकि आप जैसे आपने कहा 9 मिलियन बैरल्स का फर्क है, वो काफी सिग्निफिकेंट है। तो अल्टरनेटिव सोर्सेस में से मतलब पंप करना पड़ेगा। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो जाता है, आर्थिक वृद्धि का दर विश्व में कम हो जाता है जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है, तो एक सप्लाई एंड डिमांड में एक एडजस्टमेंट होगा।
1: राइट, थैंक यू उदयन फॉर ज्वाइनिंग अस इन द स्टूडियोज एंड अपडेटिंग अस।
0: थैंक यू लालू।
1: एंड फ्रेंड्स, बिफोर वी क्लोज, हियर इज अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस। बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस गेन ओवर 1%, सेंसेक्स एड्स मोर देन 800 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स अबव 24,200. Most Asian stock market indices end in positive territory. And global crude oil prices rise. Well, friends, that's all we have for you in this edition of Market Mantra. This is myself, Lalima Aneja Dang, and my co-anchor, Nikhil Kumar, signing off. Namaskar.
2: Namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
4: You were listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 p.m.

श्रोताओं, सुना है कि अगर कोई दिल में उतरना चाहे तो बहुत सारे बहाने हैं। एक प्यारी सी मुस्कान, थोड़ी सी खामोशी, कुछ अनकही बातें और थोड़ा सा अपनापन। जी हाँ श्रोताओं, यही वो चाबी है जो

हर दिल का ताला खोलती है। जी हाँ, यही अंदाज लिए आज इस वीराने में बहार लेकर आप तक पहुंच गए हैं गीत मेरे मन मीत लेकर। स्टूडियो से साथ हूँ मैं रोहिणी। जी हाँ श्रोताओं, अपने कार्यक्रम को आप तक पहुंचाएंगे बेहद प्यारे और सदाबहार गीतों के साथ। तो आइए आगाज करें आज के गीत मेरे मन मीत का इस प्यारे से गीत के साथ, जो कि है चोरी चोरी फिल्म से लता जी और मना डी की आवाज में। इस गीत को आप सुनेंगे, इस गीत को अल्फाज दिए हैं हसरत जयपुरी साहब ने और संगीत से सजाया है शंकर जयकिशन जी ने।

मैं उत्कर्ष श्रोताओं आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम कूल चैनल और प्रोग्राम आपका पसंदीदा गीत मेरे मन में।

100.1 MHz पर आप सुन रहे हैं गीत मेरी मनमीत। स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है 11:51 और 6 सेकेंड। और श्रोताओं, ये अगला गीत तीसरी मंजिल फिल्म से आप सुनेंगे मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में। इस गीत को अल्फाज दिए मजरू सुल्तानपुरी साहब ने और संगीत से सजाया आदि बर्मन जी ने।

100.1 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। फिलहाल समय हमें इजाजत नहीं दे रहा कि अपने सफर को आगे बढ़ाएं, तो फिलहाल मुझे यानी रोहिणी को दीजिए इजाजत। और कहते हैं ना, बातें तमाम मुकम्मल हुई जरूरी तो नहीं। जी हाँ, ये मुलाकात अभी और कुछ आगे बढ़ेगी। जी हाँ, फिलहाल मैं आपसे लेती हूँ इजाजत, फिर मिलूंगी। इंतजार रखिएगा और सुनते रहिएगा आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। ये अगला गीत जो आप तक पहुंच रहा है आशा जी और रफी जी की आवाज में, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने इस गीत को संगीत से सजाया है, तो अल्फाज दिए आनंद बख्शी जी ने। हम जूली फिल्म

0: एकजुट करने की अनूठी क्षमता होती है और आज की प्रस्तुति ने भारत न्यूजीलैंड की मित्रता की गर्मजोशी और गहराई को खूबसूरती से प्रतिबिंबित किया है। यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत की राजदूत मुआनपुई साइवेई ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते से कई क्षेत्रों में मिलकर काम करने का बड़ा अवसर है।
1: Free trade agreement is a great opportunity.
2: मुक्त व्यापार समझौता भारत और न्यूजीलैंड के लिए साथ मिलकर काम करने का एक बड़ा अवसर है। न्यूजीलैंड बागवानी, डेयरी और कृषि जैसे प्राथमिक उद्योगों में बेहद मजबूत है, जबकि भारत के पास कुशल मानव संसाधन और विशाल कार्यबल है। साथ ही न्यूजीलैंड से निवेश की भी अच्छी संभावनाएं हैं। यदि दोनों देश मिलकर साझेदारी करें और नवाचार को आगे बढ़ाएं तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा और हम अपने उत्पादों व समाधानों को वैश्विक बाजारों तक भी पहुंचा सकेंगे।
1: एंड देन वी कैन सेल टू फर्दर मार्केट्स एज वेल।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल मुसैदी से मुलाकात में दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। डॉ. जयशंकर ने कहा कि चर्चा व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, रक्षा और साइबर तथा AI क्षेत्रों पर केंद्रित रही। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता का सबसे बड़ा संरक्षक बना रहेगा। उन्होंने विशाखापत्तनम में नौ सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि बदलते वैश्विक सुरक्षा माहौल में भारतीय नौसेना देश के समुद्री हितों की प्रभावी ढंग से रक्षा कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत के 90% से अधिक व्यापार का परिवहन समुद्री मार्गों से होता है, इसलिए समुद्री सुरक्षा देश की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। रक्षा मंत्री ने कहा कि स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट महेंद्रगिरी का नौसेना में शामिल होना रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज बिहार के गया जी का दौरा करेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। कोयला मंत्रालय ने कल वाणिज्यिक कोयला ब्लॉकों की नीलामी के 15वें चरण तथा 13वें और 14वें चरण के दूसरे प्रयास की बोलियां खोली। मंत्रालय के अनुसार नीलामी के लिए पेश किए गए 23 कोयला ब्लॉकों में से 8 के लिए कुल 21 बोलियां प्राप्त हुई हैं। मंत्रालय ने कहा कि इस नीलामी में 16 कंपनियों ने भाग लिया जो देश में वाणिज्यिक कोयला खनन में उद्योग जगत की मजबूत भागीदारी को दर्शाता है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में अब से थोड़ी देर में रात 12:30 बजे स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। इससे पहले कल फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत समारोह में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों को भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखने और भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच अटूट संबंधों को मजबूत करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि संगीत में लोगों को

शाम की रंगीनियां और सब सुहानी याद है। शाम की रंगीनियां और सब सुहानी याद है। सब हकीकत भूल बैठी एक कहानी याद है। आंसुओं से बनाती हूँ मैं तेरी तस्वीर, आंसुओं से बनाती हूँ मैं तेरी तस्वीर। मेरी आँखों को तेरा चेहरा ज़बानी याद है। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफ़र मंजू। वक्त हुआ है 12:12 और 5 सेकेंड। शुरू हो चुका है प्रोग्राम निशिगंधा। निशिगंधा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम का आगाज़ करते हैं लता मंगेशकर और रफी साहब की आवाज़ के साथ।

जब बात दीवानों की चली है तो बात दूर तक जानी चाहिए, शायद वहां तक जहां हम ये ना जान जाएं कि ये लोग कभी अकेले नहीं होते। किसी का इंतजार, किसी का ख्वाब हमेशा इनके साथ चलता है। और कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी थोड़े थोड़े दीवाने होते हैं, पूछो कैसे, किसी की याद में, किसी के प्यार में, है ना। फिलहाल हमें इंतजार है एक प्यारे से गाने का, अगला गीत किशोर कुमार और लता जी की आवाज़ में।

आपको पता है, जब मैं ये गाना सुन रही थी तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, और वो ये था कि क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी को देखा हो और उसने भी आपको देखा हो और फिर ऐसा लगा हो कि टाइम रुक गया? अगर ऐसा कुछ फिल्मी किस्सा आपके साथ हुआ है तो फिर स्माइल करिए, क्योंकि जब आप स्माइल करते हैं तो आपकी स्माइल मुझ तक पहुंचती है और हम जुड़ते हैं दिल से दिल तक। अगला गीत आप ही के लिए।

कहते हैं कि वादे टूट जाते हैं, लेकिन जो वादे आँखों से किए जाते हैं वो कभी नहीं बदलते। हम लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत बिज़ी होते हैं, और अगर इस बिज़ी ज़िंदगी में आपके पास कोई ऐसा इंसान है जिसकी आँखों में आपको अपना अक्स दिखता है, तो आप खुशनसीब हैं। उनके लिए आज का दिन थोड़ा ख़ास बनाने की कोशिश करते हैं। प्यार का यह एहसास यूं ही बना रहे। अगला गीत अभी के लिए।

एक पूरा जीवन लुटाया जा सकता है प्रेम की तलाश में, एक पूरा जीवन लुटाया जा सकता है प्रेम की तलाश में। एक प्रेमी तो ठहराव बनकर सबके हिस्से आना ही चाहिए। MHz पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 12:39:54। गीतों की महफिल, बातों की महफिल, यानी आपकी अपनी महफिल। सुन रहे हैं आप अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

के साथ आपकी रात की हम सफर। मंजू, वक्त हुआ है 12:39 और 54 सेकंड। गीतों की महफिल, बातों की महफिल, यानी आपकी अपनी महफिल। सुन रहे हैं आप अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

जब मौसम की बात चली है, दिल की बात चली है, तो फिर इस हसीन सफ़र में रुकना मना है। जब समा इतना प्यारा हो और दिल पूरी तरह से रोमांटिक मिजाज में हो, तो प्यार में लंबे चौड़े वादे न करके पल भर का प्यार मुकम्मल किया जाए। अगला गीत किशोर कुमार की आवाज़ में आप ही के लिए।

कभी कभी हम किसी के प्यार में इस कदर खो जाते हैं कि हमें उस इंसान की झूठी तसल्ली भी सच्ची लगने लगती है। होता है आपके साथ ऐसे? मेरे साथ भी होता है। बस अब वो इंसान हमारे साथ कुछ पल बिता ले, वही हमें बहुत कुछ लगता है। अगर इस गाने को सुनकर आपके दिल में कोई नाम धड़कता है, कोई ऐसा नाम जिससे आज भी आपको उम्मीद है, चाहे वो पल भर के लिए ही क्यों ना हो, तो इस गाने के साथ उसे याद करते हैं आज। अगला गीत आशा जी और महेंद्र कपूर की आवाज़ में।

शहर में एक ठंडी छांव ढूंढ ली हो, ठंडा किनारा ढूंढ लिया हो, सुकून वाली एक जगह मिल गई हो। अगर आप भी इस वक्त अंधेरे में सिर्फ रेडियो और आवाज के सहारे बैठे हुए हैं, तो यकीन मानिए आप यकीन नहीं है, आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि आपको तो मालूम ही है अंधेरे में मेरी आवाज लगातार आपका पीछा करती है। अगला गीत आप ही के लिए।

जब दिल ने अपना बोल ही दिया है तो ये सफर लंबा जाएगा। फिलहाल निशिगंधा में आज के लिए बस इतना ही। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार। आपसे फिर मुलाकात होगी 1:10 पर हमारे अगले प्रोग्राम में। आप बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ।

0: आई वेई ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते से कई क्षेत्रों में मिलकर काम करने का बड़ा अवसर है.
1: Free trade agreement is a great opportunity.
2: मुक्त व्यापार समझौता भारत और न्यूजीलैंड के लिए साथ मिलकर काम करने का एक बड़ा अवसर है. न्यूजीलैंड बागवानी, डेयरी और कृषि जैसे प्राथमिक उद्योगों में बेहद मजबूत है, जबकि भारत के पास कुशल मानव संसाधन और विशाल कार्यबल है. साथ ही न्यूजीलैंड से निवेश की भी अच्छी संभावनाएं हैं. यदि दोनों देश मिलकर साझेदारी करें और नवाचार को आगे बढ़ाएं, तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा और हम अपने उत्पादों व समाधानों को वैश्विक बाजारों तक भी पहुंचा सकेंगे.
1: एंड देन वी कैन सेल टू फर्दर मार्केट्स एज वेल.
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता का सबसे बड़ा संरक्षक बना रहेगा. उन्होंने विशाखापत्तनम में नौ सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि बदलते वैश्विक सुरक्षा माहौल में भारतीय नौसेना देश के समुद्री हितों की प्रभावी ढंग से रक्षा कर रही है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट महेंद्र गिरी का नौसेना में शामिल होना रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है. संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की. मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा. श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए. उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज बिहार के गया जी का दौरा करेंगे. इस दौरान उपराष्ट्रपति बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे. सर्वोच्च न्यायालय अयोध्या राम मंदिर में कथित दान चोरी की निष्पक्ष जांच की मांग वाली कई याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करेगा. इससे पहले अयोध्या की एक अदालत ने इस मामले में 8 आरोपियों में से 3 को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था. उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले महीने इस मामले में विशेष जांच दल SIT का गठन किया था. कैलाश मानसरोवर यात्रा का पहला जत्था कल उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के लिपुलेख दर्रे से चीन में प्रवेश कर गया. इस जत्थे में 52 सदस्य हैं. चीन में प्रवेश करने के बाद ये जत्था आगामी दिनों में पवित्र कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील की यात्रा से पहले निर्धारित शिविरों में विश्राम करेगा. फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में स्पेन और बेल्जियम के बीच मुकाबला जारी है. इससे पहले कल फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया. विंबलडन टेनिस में मौजूदा चैंपियन और दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सिनर ने 7 बार के विंबलडन विजेता नोवाक जोकोविच को सीधे सेटों में हराकर पुरुष सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है. फाइनल में सिनर का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा. इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत समारोह में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों को भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखने और भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच अटूट संबंधों को मजबूत करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि संगीत में लोगों को एकजुट करने की अनूठी क्षमता होती है और आज की प्रस्तुति ने भारत न्यूजीलैंड की मित्रता की गर्मजोशी और गहराई को खूबसूरती से प्रतिबिंबित किया है। यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में यह पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत की राजदूत मुआन पुई

100.1 MHz पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 1:11 और 9 सेकेंड। शुरू हो चुका है प्रोग्राम गीत सुहाने। प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। गीत सुहाने एक ऐसा प्रोग्राम जहां हम एक ऐसा दौर जो इतिहास से, स्मृतियों से, हमें संगीत से

फिल्म का नाम दिल्ली का ठग और आवाजें थी किशोर कुमार और आशा जी की, संगीत रवि का और गीतकार थे शैलेंद्र साहब। ये फिल्म रिलीज हुई थी 1958 में और इस फिल्म को निर्देशित किया था एस डी नारंग ने। फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी किशोर कुमार, नूतन, मदनपुरी, इफ्तिखार और इस फिल्म का संगीत रवि ने दिया था और इस फिल्म के जो गीत थे वो लिखे थे एस एच बिहारी, शैलेंद्र और मजरू सुल्तानपुरी ने। अगला गीत अब तक पहुंच रहा है लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज़ में, फिल्म चोरी चोरी से।

लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज़ में सुन रहे थे आप ये खूबसूरत गीत फिल्म चोरी चोरी से। चोरी चोरी 1956 में प्रदर्शित हुई थी और ये एक बहुत ही लोकप्रिय रोमांटिक फिल्मों में से एक थी और इस फिल्म का निर्देशन किया था अनंत ठाकुर ने। फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी राज कपूर, नरगिस ने और भगवान दादा प्राण, डेविड, जॉनी वॉकर सहायक भूमिकाएं निभाई थी उन्होंने। और इस फिल्म का संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने और इस फिल्म के संगीत की लोकप्रियता ने इस फिल्म को बहुत ही कामयाबी दिलाई थी। और ये फिल्म हिंदी सिनेमा की कालजयी फिल्मों में से एक मानी जाती है और ऐसा कहा जाता है कि 1991 में प्रदर्शित फिल्म दिल है कि मानता नहीं इस फिल्म की कहानी से प्रेरित है। और अब अगला गीत अब तक पहुंच रहा है फिल्म कोहिनूर से रफी साहब और लता जी की आवाज़ में।

फिल्म का नाम कोहिनूर और आवाज़ थी लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की, संगीत नौशाद साहब का और गीतकार शकील बदायूनी। अगर इस फिल्म की बात करें यानी कोहिनूर फिल्म की बात करें तो ये रिलीज़ हुई थी 1960 में और ये एक एक्शन एडवेंचर फिल्म थी जिसको प्रोड्यूस किया था वीएन सिन्हा ने और डायरेक्ट किया था एसयू सनी ने। फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी दिलीप कुमार, मीना कुमारी, लीला चिटनिस और कुमकुम ने। संगीत नौशाद साहब का था और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त सफल रही थी और साल 1960 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी। और अब अगला गीत किशोर कुमार और आशा जी की आवाज़ में।

100.1 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफ़र मंजू। वक्त हुआ है 1:38 और 52 सेकेंड और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गीत सुहाने। अगला गीत लता जी की आवाज़ में।

फिल्म खानदान से सुना आपने ये सदाबहार गीत, लता मंगेशकर की आवाज़ में। संगीत रवि का था और गीतकार थे राजेंद्र कृष्ण। अगर इस फिल्म की बात करें, खानदान फिल्म की बात करें, तो ये रिलीज़ हुई थी 1965 में और इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी सुनील दत्त, नूतन, ओम प्रकाश, ललिता पवार और मुमताज़ ने। इस फिल्म का निर्देशन किया था ए भीम सिंह ने और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट थी। और इस फिल्म की का हिट होने के पीछे सबसे प्रमुख जो कारण था वो था इसका संगीत। इस फिल्म के संगीत को दर्शकों द्वारा खासा सराहा गया। और अब अगला गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में।

101.1 मेगाहर्ट्ज पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ, और मैं हूं आपके साथ मंजू, और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गीत सुहाने।

गीत सुहाने प्रोग्राम का आज का संगीत भरा सफ़र यहीं तक। अब से थोड़ी देर में यानी कि 2 बजे सुनेंगे आप हिंदी और अंग्रेज़ी में समाचार। आपसे फिर मुलाकात होगी 2:10 पर हमारे अगले प्रोग्राम में। आप बने रहिए आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत समारोह में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों को भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखने और भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच अटूट संबंधों को मजबूत करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि संगीत में लोगों को एकजुट करने की अनूठी क्षमता होती है और आज की प्रस्तुति ने भारत न्यूजीलैंड की मित्रता की गर्मजोशी और गहराई को खूबसूरती से प्रतिबिंबित किया है। यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में यह पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत की राजदूत मुआनपुई साईवेई ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते से कई क्षेत्रों में मिलकर काम करने का बड़ा अवसर है।
1: फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी।
2: मुक्त व्यापार समझौता भारत और न्यूजीलैंड के लिए साथ मिलकर काम करने का एक बड़ा अवसर है। न्यूजीलैंड बागवानी, डेयरी और कृषि जैसे प्राथमिक उद्योगों में बेहद मजबूत है, जबकि भारत के पास कुशल मानव संसाधन और विशाल कार्यबल है। साथ ही न्यूजीलैंड से निवेश की भी अच्छी संभावनाएं हैं। यदि दोनों देश मिलकर साझेदारी करें और नवाचार को आगे बढ़ाएं तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा और हम अपने उत्पादों व समाधानों को वैश्विक बाजारों तक भी पहुंचा सकेंगे।
1: And then we can sell to further markets as well.
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा

0: दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता का सबसे बड़ा संरक्षक बना रहेगा। उन्होंने विशाखापत्तनम में नौसैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि बदलते वैश्विक सुरक्षा माहौल में भारतीय नौसेना देश के समुद्री हितों के प्रभावी ढंग से रक्षा कर रही है। रक्षा मंत्री ने कहा कि स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट महेंद्र गिरी का नौसेना में शामिल होना रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने संसद के मानसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज बिहार के गया जी का दौरा करेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। जम्मू फिल्म महोत्सव JFF के 5वें संस्करण को दुनिया भर के फिल्म निर्माताओं से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है। ये फिल्म महोत्सव जम्मू में 28 और 29 सितंबर को आयोजित होगा। इस संस्करण में अब तक 35 देशों से 180 फिल्मों की प्रविष्टियां प्राप्त हो चुकी हैं। प्रविष्टियां भेजने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। अमेरिका अगले सप्ताह राजनीतिक आतंकवाद के फिर से उभरते खतरे पर चर्चा करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसमें भारत सहित 60 देशों को निमंत्रण भेजा गया है। यह सम्मेलन 16 जुलाई को अमेरिकी विदेश विभाग में होगा। इस बैठक में यूरोप, लैटिन अमेरिका और एशिया के देश और गृह मंत्रियों के शामिल होने की उम्मीद है। इसका उद्देश्य उभरते सुरक्षा खतरों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्थापित करना है। क्रिकेट में लॉर्ड्स में भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे पहले महिला टेस्ट मैच के पहले दिन भारत ने पहली पारी में 285 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने शानदार 83 रन की पारी खेली। कप्तान हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा ने भी अर्धशतक लगाए। इंग्लैंड की ओर से सोफी एक्लेस्टोन ने 3 विकेट लिए, जबकि मैंडी विलियर्स और इसी वोंग ने 2-2 विकेट लिए। जवाब में पहले दिन का खेल समाप्त होने तक इंग्लैंड ने 1 विकेट पर 21 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। Prime Minister Narendra Modi received a warm and enthusiastic welcome upon his arrival in Auckland, marking the start of his historic 2-day visit to New Zealand. This is the first by an Indian Prime Minister in nearly 4 decades. After arriving in Auckland yesterday, Prime Minister Modi was received at the airport by New Zealand Prime Minister Christopher Luxon. The Indian community gathered in large numbers to greet him. The atmosphere was filled with excitement as people waved the Indian tricolour and chanted Kia Ora Modi to welcome him. Mr. Modi witnessed a vibrant celebration of India's rich cultural heritage during the community welcome in Auckland. During his visit, Prime Minister Narendra Modi and his New Zealand counterpart are expected to discuss ways to further strengthen cooperation in trade, investment, education, technology and people-to-people ties, reflecting the growing partnership between the two countries. Indian High Commissioner to New Zealand, Muan Pui Saiwui, expressed hope that the visit will provide fresh momentum to bilateral ties. She also pointed to the India-New Zealand Free Trade Agreement signed in April this year, saying it would further expand cooperation in trade and commerce, maritime security, people-to-people ties, culture, tourism and counter-terrorism.
2: We will be building on the things that we've already worked on. So free trade agreement is signed, but it has to be ratified and we have to push it towards the unlocking the full potential of the free trade agreement. So there are some things about trade and commerce. There will be some things about tourism, culture, sports diplomacy, and also under the economy piece, there will be more on horticulture, agriculture, and education as well. So there are many, many aspects of it, including maritime security. As well.
1: As India prepares to commission the indigenous stealth frigate Mahendragiri.

वो नहीं मिला तो मलाल क्या, जो गुजर गया सो गुजर गया। वो नहीं मिला तो मलाल क्या, जो गुजर गया सो गुजर गया। उसे याद करके ना दिल दुखा, जो गुजर गया सो गुजर गया। ना गिला किया ना खफा हुए, यूं ही रास्ते में जुदा हुए। ना तू बेवफा ना मैं बेवफा, जो गुजर गया सो गुजर गया। वो गजल की कोई किताब था, वो गुलों में एक गुलाब था। जरा

देर का कोई ख्वाब था, जो गुजर गया सो गुजर गया। मुझे पतझड़ों की कहानियां न सुना सुना के उदास कर, मुझे पतझड़ों की कहानियां न सुना सुना के उदास कर। तू खिजा का फूल है, तू खिजा का फूल है, मुस्कुरा जो गुजर गया सो गुजर गया। वो नहीं मिला तो मलाल क्या, जो गुजर गया सो गुजर गया। उसे याद करके न दिल दुखा, जो गुजर गया सो गुजर गया। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू। वक्त हुआ है 2:13 और 4 सेकंड। रात सुरमई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। रात सुरमई यानी एक ऐसा प्रोग्राम जहां हम रात के दर्द को, रात के एहसास को अपने गीतों से, अपनी गजलों से, अपनी कविताओं से, अपनी बातों से रात के दर्द को समझने की कोशिश करते हैं, पहचानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए फिर कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस सदाबहार गीत के साथ।

0: जब निगाहें मिलाने को जी चाहने लगे और दीदार को दिल तरसे तो समझो इश्क सातवें आसमान पर है, और जब इश्क सातवें आसमान पर है तो फिर ये वाला गाना सुनना तो बनता है। अगला गीत फिल्म सत्य पे सत्ता से, वो इश्क ही क्या जिसमें सर न झुके।
1: ओहो, अरे कोई सांस तो छेड़ो, झुका के सर को पूछो, मैडम हाउ डू यू डू।
2: नहीं नहीं नहीं भाभी, ऐसे नहीं, एक्टिंग करके बताओ।

0: ऐसा क्या?
1: अब तुम करके दिखा, कैसे बोलोगे?
2: How do you do?
1: How do you do?
2: I love you.
1: ओहो, I love you इतनी जल्दी नहीं रे बाबा।

0: I like you.
1: अब तुम्हारे भेजे में बात आई, अब आगे बढ़े।
0: ठहरो ठहरो ठहरो ठहरो,
2: अरे तू भी चुप हो जा।
0: खामुखा बीच में बजाता रहता है। अच्छा भाभी, अगर वो नहीं शर्माई तो?
1: अरे पागल बुद्धू, वो अगर नहीं शर्माई तो कोई और शर्माएगी।
3: ऐसा क्या?
1: हाँ,

वैसे जब कोई इतनी शिद्दत और अदब से प्यार का इजहार करे तो कोई कैसे अपना दिल ना हारे, है ना। सच्चा प्यार भी तो यही होता है, जहाँ जुबान से पहले आंखें झुक जाती हैं, दिल की धड़कनें अचानक बढ़ जाती है। अगर इस गाने को सुनकर आपकी दिल की धड़कनें भी बढ़ गई हैं तो ये अगला गीत आप ही के लिए, अगला गीत किशोर कुमार की आवाज़ में।

वो जो पहली मोहब्बत वाली घबराहट होती है ना, वही है इस गाने में। जब आप सामने वाले से बहुत कुछ कहना चाहते हैं पर शब्द नहीं मिलते, समझ नहीं आता कि इश्क को कहा कैसे जाए, और बस वहीं पर एक प्यारी सी मुस्कान सब कुछ कह देती है। कितना खूबसूरत होता है ना वो एहसास, जब कोई आपके सामने आए और आपकी धड़कनें अचानक से बढ़ जाए, आपको वो शब्द ना मिले जिसमें इस खूबसूरत इश्क का इजहार किया जाए। अगला गीत आप तक पहुंच रहा है किशोर कुमार की आवाज़ में।

सूरज ने कभी वादा नहीं किया सुबह से मिलने का। सूरज ने कभी वादा नहीं किया सुबह से मिलने का, जबकि वो हर रोज मिला। नदियों ने कभी नहीं कहा सागर से, जबकि वो मिली। पेड़ों ने कभी नहीं किया वादा हमसे, जबकि उन्होंने फल दिया। जहां आश्वस्ति होती है वहां वादा नहीं होता, वादा खुद से किया गया एक छल है। मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू। वक्त हुआ है 2:40 और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रात सुरमई। अगला गीत किशोर कुमार की आवाज़ में।

कुछ भी कहो, पहली मुलाकात का जादू ही कुछ और होता है ना। जब आप घंटों आईने के सामने खड़े होकर सोचते हैं कि कौन से कपड़े पहने जाएं, बाल कैसे बनाए जाएं, पहली मुलाकात में क्या बात की जाए, दिल की धड़कनें इतनी तेज होती हैं कि लगता है कि सामने वाले को सुनाई ना दी जाए। सच बताऊं दोस्तों, जिंदगी में हम कितनी भी मुलाकातें क्यों ना कर लें किसी और से, पर जो पहली मुलाकात का जादू होता है वो हमेशा दिल के लिए

वैसे ये बात तो सच है कि प्यार कभी पूछ कर या बता कर नहीं होता, और ये तो बस चुपके से हवा के झोंके की तरह आता है और पूरे दिल पे छा जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि मोहब्बत की सबसे बड़ी खासियत भी यही है और खूबसूरती भी यही है कि इसका कोई वक्त नहीं होता और कोई जगह नहीं होती। बस दिल हार बैठे तो हार बैठे। अगर आपके दिल में भी इस वक्त किसी का चेहरा घूम रहा है तो याद कीजिए इस गीत में उस इंसान को।

इंसान को अपनी उम्र का एहसास तब होता है जब जिंदगी में उसकी बहुत सी पहलुएं धीरे धीरे बंद होती जाती हैं या ख़त्म होती जाती हैं। और पंचम मेरी जिंदगी में एक ऐसा ही पहलू है। पंचम के साथ क्या रिश्ता था मैं नहीं जानती, या मैं उसे कोई नाम नहीं देना चाहती। पंचम के साथ मैंने बहुत फिल्मों में काम किया।

रात सुरमई में आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। 3 बजे सुनेंगे आप हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 3:10 पर हमरा ही प्रोग्राम लेकर आपके साथ रहेंगी वंदना चुग। मुझे यानी अपनी रात की हम सफ़र मंजू को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत समारोह में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों को भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखने और भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच अटूट संबंधों को मजबूत करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि संगीत में लोगों को एकजुट करने की अनूठी क्षमता होती है और आज की प्रस्तुतियों ने भारत न्यूजीलैंड की मित्रता की गर्मजोशी और गहराई को खूबसूरती से प्रतिबिंबित किया है। यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों की सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में यह पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत की राजदूत मुआन पुई साइवेई ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते से कई क्षेत्रों में मिलकर काम करने का बड़ा अवसर है।
1: Free trade agreement is a great opportunity.
2: मुक्त व्यापार समझौता भारत और न्यूजीलैंड के लिए साथ मिलकर काम करने का एक बड़ा अवसर है। न्यूजीलैंड बागवानी, डेयरी और कृषि जैसे प्राथमिक उद्योगों में बेहद मजबूत है, जबकि भारत के पास कुशल मानव संसाधन और विशाल कार्यबल है। साथ ही न्यूजीलैंड से निवेश की भी अच्छी संभावनाएं हैं। यदि दोनों देश मिलकर साझेदारी करें और नवाचार को आगे बढ़ाएं तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा और हम अपने उत्पादों व समाधानों को वैश्विक बाजारों तक भी पहुंचा सकेंगे।
1: And then we can sell to further markets as well.
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज बिहार के गया जी का दौरा करेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। महाराष्ट्र विधानसभा का मॉनसून सत्र कल

समाप्त हो गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के विमान हादसे की जांच सीआईडी और विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ब्यूरो की अंतिम रिपोर्ट अगले वर्ष जनवरी में आने की उम्मीद है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। इस बीच विधान परिषद के सभापति राम शिंदे ने बताया कि परिषद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से नागपुर में आयोजित होगा। संयुक्त राष्ट्र की संस्था संयुक्त राष्ट्र महिला संगठन ने कहा है कि पिछले 18 महीनों में निधि कटौती के कारण लगभग 10 लाख महिलाएं आवश्यक मानवीय सहायता से वंचित रह गई हैं। संस्था ने कहा है कि जनवरी 2025 में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पदभार ग्रहण करने के बाद विदेशी सहायता में की गई कटौती के बाद स्थिति और भी खराब हो गई। अमरीका और अन्य प्रमुख दानदाताओं द्वारा सहायता में कटौती के कारण अन्य संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों को भी कर्मचारियों की संख्या कम करनी पड़ी है और दुनिया भर में कार्यक्रमों को सीमित करना पड़ा है। अमेरिका अगले सप्ताह राजनीतिक आतंकवाद के फिर से उभरते खतरे पर चर्चा करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसमें भारत सहित 60 देशों को निमंत्रण भेजा गया है। यह सम्मेलन 16 जुलाई को अमरीकी विदेश विभाग में होगा। इस बैठक में यूरोप, लैटिन अमेरिका और एशिया के विदेश और गृह मंत्रियों के शामिल होने की उम्मीद है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में स्पेन और बेल्जियम के बीच दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला अमेरिका के इंगलवुड स्थित लॉस एंजलिस स्टेडियम में खेला जा रहा है। पहले क्वार्टर फाइनल में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: इसके पैदा होते मैं उसे हवाई जहाज की सैर कराऊंगा, ताकि ताकि बड़ा होकर वो भी इंडियन एयरफोर्स में पायलट बने, बहुत बड़ा।
1: दोस्तों, आराधना फिल्म से अभी आपने गीत सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार का गाया हुआ। आनंद बख्शी ने गीत को लिखा था और धुन बनाई थी सचिन देव बर्मन ने। अगला गीत आप सुनेंगे दोस्ताद फिल्म से, आशा भोसले और मोहम्मद रफी का गाया हुआ है, कमर जलाल आबादी की रचना है और संगीत ओपी नैयर का।

दोस्तों, बहुत बार आपसे कोई मुद्दत बाद मिलता है तो वो लोग आपसे इतने सवाल कर डालते हैं कि सांस भर में ही सवाल पर सवाल, और आप सोचने लगते हैं कि भाई इससे अच्छा तो शायद ना ही मिलते, या मैंने इनसे इनके साथ मिलकर ही गलती कर ली। किसी के मन में ऐसा ना आए तो आप खुशी से उनसे मिलें और बातचीत कीजिए।

ससुराल फिल्म से ये गीत आपने सुना मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर का गाया हुआ। हसरत जयपुरी की रचना थी और शंकर जयकिशन का संगीत।

आवर हाउस। इस फिल्म से अभी आपने गीत सुना लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में, असद भोपाली की रचना थी और रवि का संगीत। दोस्तों वाकई में ही बहुत खुश नसीब लोग होते हैं जो एक दूसरे का प्यार उम्र भर के लिए पा लेते हैं। और अगला गीत हमराही कार्यक्रम में आप सुनेंगे।

मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में ये गीत आपने सुना, भरत व्यास की रचना थी और इकबाल कुरैशी का संगीत। अगला गीत आप सुनेंगे छोटी सी बात फिल्म से, गीत आशा भोसले और विजय येसुदास की आवाज़ में है, योगेश का लिखा गीत है और सलील चौधरी का संगीत।

दोस्तों, जब आप अपनों से दिल की बात करने लग जाते हैं तो बस फिर उनकी दूरी कभी सहन नहीं हो पाती।

महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आपने ये गीत सुना। राजा मेहंदी अली खान की रचना थी और संगीत मदन मोहन का। अगला गीत आप सुनेंगे धूल का फूल फिल्म से, लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज़ में। साहिल लुधियानवी की रचना है और संगीत एंड तका।

कार्यक्रम चल रहा है हमराही, और हमराही कार्यक्रम के अंतर्गत युगल गीत आप सुन रहे हैं अपनी दोस्त वंदना चुक के साथ।

0: हमारे सभी दोस्तों ने पहचान लिया होगा कि ये गीत ताजमहल फिल्म से था, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में। साहिल लुधियानवी की रचना थी और संगीत रोशन का। अगला गीत आप सुनेंगे हम दोनों फिल्म से, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोंसले का गाया हुआ है। दोस्तों, वक्त की रफ्तार चल रही है और कह रही है कि इस कार्यक्रम का ये आखिरी गीत है, और हम भी तो वक्त में बंधे होते हैं और अनुशासन का पालन करते रहते हैं। गीत आपके साथ।
1: अभी न जाओ छोड़ कर,

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत समारोह में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों को भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखने और भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच अटूट संबंधों को मजबूत करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि संगीत में लोगों को एकजुट करने की अनूठी क्षमता होती है और आज की प्रस्तुति ने भारत न्यूजीलैंड की मित्रता की गर्मजोशी और गहराई को खूबसूरती से प्रतिबिंबित किया है। यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में यह पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत की राजदूत मुआनपुई साइवेई ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते से कई क्षेत्रों में मिलकर काम करने का बड़ा अवसर है।
1: Free trade agreement is a great opportunity.
2: मुक्त व्यापार समझौता भारत और न्यूजीलैंड के लिए साथ मिलकर काम करने का एक बड़ा अवसर है। न्यूजीलैंड बागवानी, डेयरी और कृषि जैसे प्राथमिक उद्योगों में बेहद मजबूत है, जबकि भारत के पास कुशल मानव संसाधन और विशाल कार्यबल है। साथ ही न्यूजीलैंड से निवेश की भी अच्छी संभावनाएं हैं। यदि दोनों देश मिलकर साझेदारी करें और नवाचार को आगे बढ़ाएं तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा और हम अपने उत्पादों व समाधानों को वैश्विक बाजारों तक भी पहुंचा सकेंगे।
1: एंड देन वी कैन सेल टू फर्दर मार्केट्स एज वेल।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज बिहार के गया जी का दौरा करेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी ने मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है। बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मंजलपुर विधानसभा सीटों पर मतदान 30 जुलाई को होगा। संयुक्त राष्ट्र की संस्था संयुक्त राष्ट्र महिला संगठन ने कहा है कि

नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी का अरुणिमा कार्यक्रम में। और सभी दोस्तों को गीतों को सुनवाने के लिए मैं आ चुकी हूँ, आपकी दोस्त वंदना चुग। नमस्कार।

दोस्तों बहुत ही मधुर गीत आपने सुना, असली नकली फिल्म से लता मंगेशकर का गाया हुआ। शैलेंद्र ने गीत को रचा था और धुन तैयार की थी शंकर जयकिशन ने। पता है दोस्तों, जब आप इस गीत को सुन रहे थे साथ साथ मैं भी इस गीत को गुनगुना रही थी, क्योंकि ये गीत मुझे भी बहुत पसंद है और पूरा गीत आता है। अगला गीत आप सुनेंगे जमाने को दिखाना है फिल्म से, शैलेंद्र की आवाज में। मजू सुल्तानपुरी ने गीत को लिखा और आर डी बर्मन ने धुन तैयार की है।

दोस्तों, बहुत बार हम जमाने को दिखाने के लिए बहुत आडंबर रचने लगते हैं। जो हम दिखावा नहीं करना चाहते वह भी करने लगते हैं, लेकिन बाद में खुद परेशान होने लगते हैं। अच्छा यही होगा कि दोस्तों से दोस्ती का रिश्ता प्यार से निभाएं और आगे बढ़ते जाएं।

लता मंगेशकर, शैलेंद्र, उषा मंगेशकर और एसवी बालसुब्रमण्यम की आवाज़ में ये गीत आपने सुना। गीत के बोल लिखे थे असद भोपाली ने और धुन बनाई थी राम लक्ष्मण ने। अरुणिमा कार्यक्रम में अब आप अगला गीत सुनेंगे प्रेम पुजारी फिल्म से, किशोर कुमार की आवाज में। शब्दों में पिरोया है नीरज ने और संगीत से संवारा है एसडी बर्मन ने।

किशोर कुमार की आवाज में अभी आपने ये सुना पेइंग गेस्ट फिल्म से। गीत रचना थी मजरू सुल्तानपुरी की और संगीत था सचिन देव बर्मन का। दोस्तों, कई बार हम किसी से बात करते हैं तो सामने वाला कभी कभी बात का मतलब जो है कोई और समझ बैठता है, और हम जब घर आ जाते हैं या कभी फिर दोबारा उनसे मिलते हैं तो वो मन में कोई ना कोई बात लेकर बैठे रहते हैं, क्योंकि जब हमने उनसे बात की थी उन्होंने उस बात का मतलब कुछ और निकाला था, लेकिन हमारा मतलब ऐसा नहीं था। तो कई बार बातों में ऐसा हो जाता है, तो अच्छा होगा कि हम बातों को आपसी में स्पष्ट कर लें ताकि रिश्तों को बिगाड़ा ना जा सके।

दोस्तों आपने भी इस गीत में सुन लिया ना कि हर बात के दो मतलब होते हैं, जो अच्छा लगे वो अपना लो और जो बुरा लगे बस उसे जाने दो, दिल पर बिल्कुल ना रखें। पैसे की गुड़िया इस फिल्म से लिया ये गीत था किशोर कुमार की आवाज़ में, वर्मा मलिक ने गीत को लिखा था और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीत दिया था। और जब दोस्तों अपने दिल की बात हमें कई बार लगता है कि कितनी देर हो गई या कितना मन करता है कि मैं अब इस बात को किसी से साझा करूं, तो उसी से ही साझा कीजिए जिसे आप अपना दोस्त मानते हैं, क्योंकि आपको मालूम ही है कि आपके दोस्त तक आपकी बात सीमित रहेगी, वरना खिली उड़ाने वाले तो दुनिया में बहुत मिल जाएंगे।

और दिल की बात कर ही लेनी चाहिए जब मौका मिले तो। पहचान फिल्म से गीत आपने सुना मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ में, वर्मा मलिक के बोल थे शंकर जयकिशन का संकेत। दोस्तों कार्यक्रम में अगला गीत अभी कुछ ही पलों बाद आपको सुनवाए। कार्यक्रम चल रहा है अरुणिमा और गीत आप सुन रहे हैं अपनी दोस्त वंदना चुग के साथ।

सुंदरता को बयां करता ये गीत आपने सुना मुकेश की आवाज में। सरस्वती चंद्र फिल्म से लिया ये गीत था। बोल इंदिवर के थे और संकेत कल्याण जी आनंद जी का था। अगला गीत आप सुनेंगे काला बाजार फिल्म से, आशा भोसले का गाया हुआ है। शैलेंद्र ने गीत को रचा है और धुन तैयार की है सचिन देव बर्मन ने। दोस्तों आप समझ गए होंगे इस धुन को सुनकर। और इस गीत को सुनवाने से पहले ये कहना चाहूँगी कि सबके सपने जो इंसान अपने मन में जब दिन की शुरुआत होती है तो एक लंबे कार्य के लिए तैयार हो जाता है एक नई ऊर्जा लेकर। तो उसके सपने जो उसने संजोए हैं वो अवश्य पूरे होने ही चाहिए।

और जब सपने साकार हो जाते हैं तो मन कितना खुश हो जाता है ना। और हमारा तो मन यही चाहता है कि आपका मन भी यूं ही खुश रहे और आप मुस्कुराते रहे। और अब कार्यक्रम के आखिर में पारसमणि फिल्म से आपको गीत सुनवा रही हूँ, लता मंगेशकर और कमल बैरोट की आवाज़ में, असद भोपाली की रचना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संकेत।

तो सो इस गीत के साथ ही अरुणिमा कार्यक्रम अब संपन्न होता है। फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में, जुड़े रहिए FM गोल्ड से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता व्यापार, वाणिज्य और रक्षा सहित आपसी सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे और प्रमुख उद्योग तथा खेल जगत की हस्तियों से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया की यात्रा पूरी करने के बाद न्यूजीलैंड पहुंचे हैं। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। भारतीय समुदाय ने भी उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी की दो दिवसीय यात्रा के स्वागत में ऑकलैंड के प्रसिद्ध स्काई टॉवर को भारतीय तिरंगे के रंगों से रोशन किया गया है। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह न्यूजीलैंड की 40 साल बाद पहली यात्रा है। वहीं न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत की राजदूत मुआनपोई साइवई ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में बताया कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते से कई क्षेत्रों को लाभ होगा।
1: Free trade agreement is a great opportunity.
2: मुक्त व्यापार समझौता भारत और न्यूजीलैंड के लिए साथ मिलकर काम करने का एक बड़ा अवसर है। न्यूजीलैंड बागवानी, डेयरी और कृषि जैसे प्राथमिक उद्योगों में बेहद मजबूत है, जबकि भारत के पास कुशल मानव संसाधन और विशाल कार्यबल है। साथ ही न्यूजीलैंड से निवेश की भी अच्छी संभावनाएं हैं। यदि दोनों देश मिलकर साझेदारी करें और नवाचार को आगे बढ़ाएं तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा और हम अपने उत्पादों व समाधानों को वैश्विक बाजारों तक भी पहुंचा सकेंगे।
1: एंड देन वी कैन सेल टू फर्दर मार्केट्स एज वेल।
0: प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश के बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि 2026-27 के अंतर्गत 611 करोड़ रुपए से अधिक की 17 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने निरंतर समर्थन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी ने मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा। वहीं बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मंजलपुर विधानसभा सीटों पर मतदान 30 जुलाई को होगा। महाराष्ट्र विधानसभा का मॉनसून सत्र कल समाप्त हो गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के विमान हादसे की जांच सीआईडी और विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ब्यूरो की अंतिम रिपोर्ट अगले वर्ष जनवरी में आने की उम्मीद है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। इस बीच विधान परिषद के सभापति राम शिंदे ने बताया कि परिषद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से नागपुर में आयोजित होगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज बिहार के गया जी का दौरा करेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। अमेरिका अगले सप्ताह राजनीतिक आतंकवाद के फिर से उभरने उत्पन्न खतरे पर चर्चा करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसमें भारत सहित 60 देशों में निमंत्रण भेजा गया है। ये सम्मेलन 16 जुलाई को अमेरिकी विदेश विभाग में होगा। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल मुसैदी से मुलाकात में दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। डॉ जयशंकर ने कहा कि चर्चा व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा

दोस्तों नमस्कार। भोर सुहाने कार्यक्रम में गीतों के साथ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हुए आपकी दोस्त वंदना चुग।

जब सच्चे मन से कोई उसे पुकारता है या अटूट विश्वास रखता है तो उसे भक्तों की पुकार सुनकर आना ही पड़ता है। आपने ये भक्ति रचना सुनी अवतार फिल्म से नरेंद्र चंचल और साथियों की आवाज़ में। आनंद बख्शी की रचना थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संकेत। दोस्तों, ईश्वर तो कण कण में निवास करते हैं और उन्होंने अपनी रचना का रूप इस धरती पर माँ को बनाकर भेजा।

ईश्वर को हमने कभी नहीं देखा, ये तो एकमात्र हमारी कल्पना है, लेकिन माँ बच्चे की पहली शिक्षिका होती है जो बच्चे को उंगली पकड़कर चलना सिखाती है, फिर उसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यालय में भेजती है। तो उस माँ की हमें हमेशा कद्र करनी चाहिए। और अब अगला गीत मनचली फिल्म से मुकेश का गाया हुआ है, आनंद बख्शी की रचना है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

मनचली फिल्म से मुकेश की आवाज में आपने गीत सुना दोस्तों। अब कृष्ण की

बांसुरी की आवाज सुनकर कौन कौन दौड़ा चला आता है ये तो सुनने वाला ही जानता है, लेकिन राधा के मन में तो हमेशा ये बांसुरी बजती रहती है और बसी रहती है।